सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और

0: संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6:05 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है वंदना कार्यक्रम। सबसे पहले लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

मस्तिष्क में होती है। जब मनुष्य अपने विचारों को पवित्र बनाता है, सत्य का मार्ग अपनाता है और दूसरों के प्रति प्रेम, दया तथा करुणा का भाव रखता है, तब उसका जीवन सार्थक बन जाता है।

लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। राम भक्ति वह सरिता है जिसमें डुबकी लगाने वाले भक्त अपने मन की थकान भूल जाते हैं। अपने मन की वीणा के तारों को राम नाम से झंकृत कीजिए और आइए राम भक्ति में खो जाएं इस राम भजन के साथ।

जो सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके मन में भक्ति व विश्वास का दीपक स्वयं ही प्रज्वलित हो जाता है। शिव के स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है। तो आइए अपने मन के सभी विकारों को त्याग कर शिव की भक्ति में शिवमय हो जाएं।

जब मन व्याकुल हो तो श्री कृष्ण का नाम एक मरहम बन जाता है। जीवन की राह कठिन हो तो श्री हरि का स्मरण एक सहारा बन जाता है। तो आइए श्री हरि के नाम से मन को सजाएं और प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें।

वंदना कार्यक्रम का अगला पल जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित है। माँ की भक्ति में ऐसा सामर्थ्य है कि पत्थर सा मन भी प्रेम और श्रद्धा से भर उठता है। तो आइए माता रानी के जयकारों से वातावरण को और भी भक्तिमय बनाएं।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद यानी 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। इस कार्यक्रम के दौरान 7:30 पर सुनिएगा एक विशेष भेंट वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर यशस्वी ठाकुर से अनुज कुमार की बातचीत। समाचार प्रभात प्रातः 8 और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 8:35 पर हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। सुबह 9:20 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 9:30 पर सुनेगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। सुबह 10 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 10:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता। महफिले कव्वाली, कव्वालियों से सजा हुआ ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:15 पर। लोकरंग कार्यक्रम का समय रहेगा 10:45। सुबह 11 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 11:05 पर सुनेगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 12 लेकर आएंगे कार्यक्रम वनिता मंडल, सैनिकों के लिए कार्यक्रम। हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे 12:30 पर। दोपहर 1 हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। दिन में 2 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दिन में 3 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 3:10 से लेकर शाम 5 तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5 हिंदी समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 5:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा के बाद भजन संध्या कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युव मंच लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 6 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। शाम 6:30 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे खेती बाड़ी। शाम 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनिएगा देश गान। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा और चांदनी रातें कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में

0: चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 7:05 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: নেতা টেলিলকে অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?

0: कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। जी, आपके साथ मैं हूं प्रकाशा। जानकारियों से भरपूर ये कार्यक्रम और साथ ही साथ मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत से विचार के साथ करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। कमियों के बीच मुस्कुराना ही असल जिंदगी है। चाहे कितनी भी परेशानियों हो, जो आज आपके पास है वो न जाने कितनों का सपना है। इसलिए जो भी है उसमें खुश रहना और शुक्रगुजार होना ही सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। खुशी कल पर मत छोड़ो, आज और अभी जीना सीखो। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा सब कुछ सही हो, परफेक्ट हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, है ना? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जिंदगी के हर पल में आप ये चाहेंगे कि सिर्फ जो आप चाहते हैं वही हो। चीज़ें तो कभी आपके चाहे के अनुसार नहीं होती ना, उससे अलग भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि परफेक्ट होगा, सब सही होगा, तब शायद हमें खुशी मिलेगी या हम तब खुश होंगे। लेकिन खुशी की वजह बहुत हैं हमारे पास। हमें ये सोचना चाहिए कि जो आज हमारे पास है, हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे अपने हमारे साथ हैं, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो सुकून भरी ज़िंदगी है। भले ही छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है और चल रही है अच्छे से, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके लिए शुक्रगुजार होना बहुत बड़ी बात है। उसे हमेशा सेलिब्रेट कीजिए कि जो आपके पास है वो शायद दूसरों का सपना है। हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होती, ये हमें मानना है, है ना? लेकिन हमारे पास जो है उसके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना है। उसके लिए हमें हमेशा ये सोचना है कि जो है बहुत है। और हाँ, बहुत कुछ पाने की उम्मीद हम हमेशा करते हैं और उसके लिए हमेशा हम प्रयासरत रहते हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। खुशी की का और वजह ये है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप हर चीज़ का आनंद ले पा रहे हैं, आप अच्छे से अपने हर काम को कर पा रहे हैं, है ना? तो वो तो सबसे बड़ी ही खुशी की बात है। तो चलिए ऐसा ही एक खूबसूरत सा गीत भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं, आइए सुनते हैं।

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: बिल्कुल जी, हंसी तंदुरुस्ती को अपनाइए और सुस्ती को दूर भगाइए, यही संदेश इस गीत में था। और ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी किशोर कुमार, भूपेंद्र सिंह और साथियों की, और प्रेम पुजारी फिल्म का नाम था। तो इस गीत के बाद चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, इतिहास की बात करेंगे, जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए

0: प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी संत्राल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। बात करते हैं आज के इतिहास की। जी 5 जून का आज का ये दिन है और आज के दिन की कुछ खास बातें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, आइए उसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। सोलह में आज ही के दिन मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1944 की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की नाजी तिकड़ी वाले देशों की राजधानियों में से मित्र सेनाओं के कब्जे में आने वाला रोम पहला शहर बना था। 1953 में आज ही के दिन डेनमार्क में संविधान लागू हुआ था। 1972 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 5 जून 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जी हाँ, तब से शुरुआत हुई थी और 1974 से इस दिन को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए ये दिन घोषित किया गया था और इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि पर्यावरण को किस तरह से हम संरक्षित रख सकते हैं उसके लिए हम जागरूक हों। तो आज का दिन यानी 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में भारतीय सेना का कारगिल में ऑपरेशन विजय, उसकी शुरुआत हुई थी आज ही के दिन। 2002 की बात करें तो भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज किया था आज ही के दिन। ২০০৫ में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण आज ही के दिन किया था। 2008 में एलेन परेरा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला था। 2017 की बात करें तो सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3D1 का सफल प्रक्षेपण आज ही के दिन हुआ था। आज के दिन जिन महान हस्तियों का जन्म हुआ था उनकी जानकारी आपके साथ साझा करें। 1961 में भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक व पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म हुआ था आज ही के दिन। और 1901 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन ललित निबंध में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाने वाले कुबेरनाथ राय का निधन हुआ था सन 1996 में।

0: जी, और देखिए इस दिन को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, और साथ ही अवैध, अनधिकृत एवं अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज ही के दिन को हम मनाते हैं। तो ये थी जानकारी आज के इतिहास की। आज यानी 5 जून का दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास अहमियत रखता था, वो जानकारी आपके साथ हमने साझा की। और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और गीत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: जल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है,

0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना पड़ोसन फिल्म से। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। जी श्रोताओं, और अब 7:30 होने को हैं। आज आप सुनेंगे एक विशेष भेंट वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर यशस्वी ठाकुर से अनुज कुमार की बातचीत, आइए सुनते हैं।
7: सुप्रभात हमीरपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनुज की प्यार भरी नमस्कार। श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस पर एक पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण शिक्षिका अगर हमारे बीच मौजूद हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं डॉक्टर यशस्वी ठाकुर, जो कि एनवायरनमेंट साइंस विभाग कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी से संबंध रखते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर यशस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज़ में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: श्रोताओं, जैसे कि यशस्वी जी यहाँ मौजूद हैं और इस वर्ष ही कुछ ही समय पहले पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 से इनके जो इंस्टीट्यूट है उसको सम्मान दिया गया है। यह सम्मान नमामि गंगे परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा प्रदान किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आकाशवाणी हमीरपुर की तरफ से। कृपया इसके बारे में बताइए, ये किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में आपके इंस्टीट्यूट को दिया गया और इतना अच्छा कार्य जो किया गया इसकी थोड़ी चर्चा हो जाए।
8: बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून एवं भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की महत्वपूर्ण नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रदान किया गया, जो कि इस साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे कॉलेज हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी को प्रदान किया गया, जो कि 100 प्रविष्टियों में से और हिमाचल में से, नॉर्थ इंडिया में से हमारा एकमात्र संस्थान था। तो इसके लिए मैं अपने डीन और वाइस चांसलर सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में

0: हमने जो पिछले 3 साल में जो काम किया पर्यावरण से जुड़ा हुआ, जैसे कि पर्यावरण जागरूकता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं सतत विकास से जुड़े विभिन्न नवाचारपूर्ण कार्यक्रम, उसके लिए ये अवार्ड हमें प्रदान किया गया।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात है और बधाई की बात है यशस्वी जी की। इतने सारे संस्थानों में से सिर्फ आपका संस्थान पूरे उत्तरी भारत में चयनित हुआ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमीरपुर ज़िले से ये सम्मान प्राप्त हुआ। और अब हम चर्चा करते हैं कि आज जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं और पर्यावरण विषय पढ़ाती भी हैं छात्र छात्राओं को, तो इसकी क्या महत्ता है और क्या इस वर्ष की जो थीम है?
0: देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस द्वारा साल 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान की गई थी, और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दुनिया भर के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और एक राजनीतिक चेतना जगाना। जहाँ तक आज के समय की बात है तो अब ये सिर्फ एक दिवस या औपचारिकता नहीं रह गया है, ये आज के समय में हमारे अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। इस साल की जो थीम है जिसकी हम बात करेंगे अभी, वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आर फ्यूचर, यानी कि प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। ये एक अभियान है जो कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कार्यवाही और प्रकृति आधारित समाधानों पर केंद्रित है।
1: जी डॉक्टर यशस्वी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिमाचल जैसा ठंडा प्रदेश भी इन गर्मियों में तप रहा है, और जो तपिश बाकी साउथ इंडिया में होती है या मध्य भारत में होती है वो तो हो ही रही है, और इतनी परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, तो क्या इसके कारण है और क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये जलवायु परिवर्तन रुक जाए?
0: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो अत्यधिक गर्मी या हीट वेव हम आज महसूस कर रहे हैं ये सीधे सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और ये गैसें सूरज की गर्मी को पर्यावरण में ही रोक लेती हैं जिससे धरती का तापमान निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण कई जगह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, मॉनसून का चक्र पूरी तरह गड़बड़ा गया है। कभी अत्यधिक सूखा पड़ता है, कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, और बेमौसमी बरसात तो हम सभी आए दिन देख ही रहे हैं।
1: जी यशस्वी जी, जैसे भारत जो हमारा देश विकासशील देश है और सतत ये विकसित भारत बनने के लिए प्रयासरत है, और आने वाले दिनों में ये हो भी जाएगा संभव, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है हमारे पर्यावरण पर भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो जैसे कि असमय बारिश हुई हिमाचल में, नदियां हैं, हमारी हवा दूषित हो रही है, पेड़ों की कटान होती है कई बार आवाजाही के साधनों को सरल बनाने के लिए, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या भूमिका है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले तो समझा क्या जाए?
0: देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल है। विकास और पर्यावरण दो विरोधी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसकी राह अपनानी होगी। इसका मतलब है ऐसा विकास जो आज की हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखे। उदाहरण के लिए, हमें ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं जैसे कोयला, उनसे हटकर रीन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय एनर्जी के सोर्सेस जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी तरफ तेजी से बढ़ना होगा। भारत सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है और कर रहे हैं। उद्योगों को भी अपनी तकनीकों में सुधार करना होगा ताकि वे कचरे और प्रदूषित पानी को बिना उपचारित किए हमारे जल स्रोतों में ना बहाए और इनका प्रदूषण करने से रोकें।
1: जी, बड़ी अच्छी बात है कि हमें भी इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनकी तरफ बढ़ना होगा और प्रयास करना होगा कि अधिक से अधिक इनका इस्तेमाल करें और जो हमारे नदियां हैं, हवा हैं, उनको प्रदूषण से बचा सकें। इसमें जो मिशन लाइफ भी है एक जो बड़ी अहम भूमिका निभाता है और पर्यावरण में रक्षक भी बन के आता है, तो इसके क्या समझा जाए और क्या इसका योगदान है?
0: देखिए, भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया एक वैश्विक जन आंदोलन है जिसे हम मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल ऑफ फॉर एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लोगों को पर्यावरण अनुकूल शैली या जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, जैसे कि व्यवहार में बदलाव करना। इसके मुख्य लक्ष्य लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल बनाना है। ये मानता है कि व्यक्तिगत छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े स्तर का पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्बन उत्सर्जन कम करना ऐसे में मदद कर सकते हैं। इसके 7 प्रमुख विषय हैं जिसमें ऊर्जा बचाना, पानी बचाना, एकल उपयोग प्लास्टिक का बहिष्कार करना, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, टिकाऊ खाद्य प्रणाली को अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना और प्राकृतिक तरीकों को बढ़ावा देना है।
1: जी, जैसे आपने प्लास्टिक की बात करी और इसमें प्लास्टिक कचरा जो है बढ़ता जा रहा है, विशेषकर हम देखते हैं कि आमतौर पर कोई भी चीज़ों को पैक किया वो प्लास्टिक की चीज़ों में ही होता है और हम उसके बाद यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, कई बार अनायास ही फेंक देते हैं, कई बार डस्टबिन वगैरह नहीं होते तो उसका निपटान करने के लिए फेंक देते हैं, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है पर्यावरण पर बहुत बुरा होता है और इस पर अंकुश या पर्यावरण को इससे बचाया कैसे जा सकता है?
0: देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण आज हमारे जल निकायों और मिट्टी के लिए एक कैंसर की तरह बन चुका है। प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता, ये टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है जो हमारे खाने और पानी के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसका जो समाधान है वो 3R प्रिंसिपल में छुपा है, रिड्यूस जो कि कम करना है, रीयूज पुनः उपयोग करना है और रिसाइकल पुनः चक्रण करना है। सबसे पहले जैसे बाजार जाते समय हम अपने साथ कपड़े या जूट का थैला ले जाने की आदत डालें और दुकानदार से प्लास्टिक की थैली ना मांगे, और दूसरा घर के सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करें। अलग कचरा होगा तो उससे रिसाइकल करना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक जनता खुद जागरूक होकर प्लास्टिक को ना नहीं कहेगी तब तक कानून पूरी तरह से कभी सफल नहीं हो सकता।
1: जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि प्रत्येक व्यक्ति का एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इसमें मुख्य रूप से निभाना चाहिए उनको अपनी जिम्मेदारी, तभी हम इस प्लास्टिक के कचरे का निपटान कर पाएंगे और इससे दूर हो पाएंगे। देखिए, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ये विश्व पर्यावरण दिवस या अन्य अवसरों पर हम लोग बढ़ चढ़ कर बड़ा पेड़ लगाते हैं या पौधे लगाते हैं और बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन इसको एक दिन के बाद भूल जाते हैं या बाद में उन पेड़ों के प्रति जो हमारी एक जिम्मेदारी है, जो हमने छोटा सा वृक्ष लगाया है, वो हम कहीं भूल जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: कड़वी लेकिन सच्ची बात कही है, केवल पौधा लगाना वृक्षारोपण नहीं है, उस पौधे को पेड़ बनने तक संभालना असली जिम्मेदारी है। इसके लिए हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि स्थानीय प्रजातियां चुनने का, अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल पौधे लगाएं, जैसे जामुन, आम, बरगद, पीपल। ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और स्थानीय पक्षियों और कीटों के लिए मददगार होते हैं। विदेशी या सजावटी पौधे पर्यावरण को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाते। और दूसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है वो है पौधों की जिम्मेदारी लेना। यदि आप एक पौधा लगा रहे हैं तो कम से कम 2 साल तक उसमें पानी देने और उसे जानवरों से बचाने का संकल्प करें, और इससे भी अच्छा आप अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या बच्चों के नाम पर पौधे लगाएं, जिससे आपका एक भावनात्मक जुड़ाव भी बना रहेगा और आप उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे।
1: जी, ये आपने अच्छी बात कही कि भावनात्मक जुड़ाव भी जुड़ा रहेगा, और अक्सर लोग ये करते भी हैं, हमारे श्रोता भी करते होंगे कि अपने जन्मदिन आदि पर वृक्ष लगाते होंगे, लेकिन उनकी 2 साल तक देखरेख करना और स्थानीय किस्में लगाना, ये इसमें बड़ी ज़रूरी बात है जो आपने बताई। और यशस्वी जी, जैसे इन कामों के लिए अगर कहते हैं किसी को बचपन से ही सींचा जाए या उनको सही राह दिखाई जाए तो इस पर अवश्य आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जो भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, युवा है, जो देश को लेकर आगे जाएंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, बच्चे और युवा हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हें प्रकृति के करीब ले जाना होगा। आज के बच्चे स्क्रीन और गैजेट्स में खोए हुए हैं, माता पिता को चाहिए कि वे उन्हें पार्क में ले जाएं, मिट्टी से जुड़ने दें और घर के छोटे छोटे पौधों में पानी देने का काम सौंपें। स्कूलों में इको क्लब को और सक्रिय करना होगा, जहां बच्चे खुद कंपोस्ट बनाना या कबाड़ से जुगाड़ जैसे वेल्थ फ्रॉम वेस्ट जैसी चीज़ें सीख सकें। जब वे बचपन से ही प्रकृति से प्यार करेंगे तो बड़े होकर भी कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
1: जी यशस्वी जी, अब समय भी हो चला है इस कार्यक्रम में, इस विशेष अंक में सुप्रभात हमीरपुर के, जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो आप जाते जाते हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रकृति हमें सब कुछ मुफ्त में देती है, चाहे वो हवा है, पानी है, छाँव है, बढ़िया मौसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब असीमित है। जब हम जो भी कदम आज उठाएंगे उसका सीधा असर हमारे बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। आइए आज हम इस मंच से प्रतिज्ञा करें कि हम प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि उसका पोषण करेंगे, क्योंकि धरती बचेगी तो हम बचेंगे।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि धरती बचेगी तभी हम बचेंगे, और प्रकृति को पोषित करना है, ना कि उसको दूषित करना है। और इस विशेष अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस के आपने आकाशवाणी हमीरपुर को अपना कीमती समय दिया, डॉक्टर यशस्वी ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष भेंट वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर यशस्वी ठाकुर से अनुज कुमार की बातचीत। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। और देखिए, बात पर्यावरण की जा रही है, पर्यावरण दिवस आज हम मना रहे हैं, तो कुछ ऐसी ही समाचारों से भी आपको अवगत करवाते हैं, कुछ ऐसी कोशिशें जो दुनिया के देश कर रहे हैं, हम सभी करते हैं, तो ऐसी ही कुछ खास खबरें हैं आपके साथ साझा करेंगे अगले सेगमेंट में।

जी देखिए, हमारे भारत में हम सभी की ये साझा कोशिश रहती है कि हम जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, और उसके प्रति जो भी हम कर सकें, जो संभव हो वो ज़रूर करें। और देखिए, उसके लिए बहुत सारे ऐसे अभियान भी चलाए जाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, या फिर अपने जन्मदिन पर जो है वो पेड़ लगाना। हर किसी को ये हिदायत दी जाती है, कहा जाता है कि जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित होने से बचेगा, सुरक्षित रहेगा। तो उसके लिए हम सभी को कोशिश करनी है। मिशन जीवन के तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो की जाती हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित होती हैं, चाहे उसमें मिट्टी को सुरक्षित करना हो, हवा पानी हर चीज़ को जो है वो शुद्ध करने के लिए कोशिश की जाती है। अब दुनिया के देशों की बात करते हैं जिन्होंने प्रकृति से सिर्फ संसाधन लिए नहीं हैं बल्कि अधिकार दिए भी हैं। बात करें इक्वाडोर की, तो 2008 में इक्वाडोर ने संविधान में प्रकृति के अधिकार को शामिल किया है। जहां सड़क बनाने से नदी को नुकसान हो रहा था, तो स्थानीय लोगों ने नदी की ओर से मुकदमा लड़ा और निर्माण रुकवाया। यहाँ प्रकृति को जीवित इकाई माना गया है, लोग प्रकृति के नुकसान को रोकने स्वयं आते हैं। जी हाँ, ये बात की इक्वाडोर की। अब फिलीपींस की बात करें, तो ग्रेजुएशन से पहले 10 पेड़ लगाने का कानून है वहाँ पर। जी, फिलीपींस में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने से पूर्व 10 पेड़ लगाने का कानून है। ग्रेजुएशन लेगेसी फॉर द एनवायरनमेंट एक्ट के तहत अब छात्र हर साल मैंग्रोव क्षेत्रों व शहरों में पेड़ लगाते हैं। ये नियम प्रकृति की भरपाई के साथ ही युवाओं को प्रेरित भी कर रहा है। कोस्टा रिका में जो है किसानों को पेड़ों को नहीं काटने पर नगद भुगतान होता है। 1980 में देश वनों की कटाई से प्रभावित था, तब ये कानून लाकर और जीवाश्म ईंधन पर टैक्स लगाकर लोगों को पैसा दिया गया। 1980 के दशक में देश का 25% हिस्सा जंगल था, आज बढ़कर 50% से ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, ये बात है कोस्टा रिका की। और अगर फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस सरकार ने सुपरमार्केट्स के खाना फेंकने को गैर कानूनी करार दिया है। 2016 में आए कानून के तहत ये खाना अनिवार्य रूप से फूड बैंकों या चैरिटी संस्थानों को दान करना पड़ता है। लाखों टन भोजन सड़ने से बनने वाली मीथेन से होने वाला नुकसान जो है वो इस वजह से रुक गया है। और बोलीविया की बात करें, तो कारों की जगह इलेक्ट्रिक केबल कारों पर जो है वो जोर दिया गया है। बोलीविया में कारों को नियंत्रित कर केवल कार नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस है। सड़कें बनाने में पेड़ों को काटना रुक गया। इलेक्ट्रिक सिस्टम होने से कार्बन उत्सर्जन भी घट गया। लोग केवल कारों में सफ़र करते हैं। ट्रैफिक व प्रदूषण नियंत्रण का मॉडल जो है वो भी वहाँ पर सफल रहा है। ये कुछ दुनिया के देशों की बात की जो कि पर्यावरण के लिए अपने जो कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। अब हिमाचल से जुड़ी हुई खबर की बात करें, तो देश के उत्तरी राज्यों को ताज़ी हवा देने वाले हिमाचल के जंगलों में हरित वन आवरण बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार नई पहलें कर रही है। प्रदेश के वन विभाग ने पहाड़ी प्रदेश में वन क्षेत्र को 2032 तक 32% करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में अभी कुल भूभाग का करीबन 28% वन क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में 55,673 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें से 37,948 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है, और इसी में 27.99% ग्रीन फॉरेस्ट कवर है, जिसे आने वाले 5-6 सालों में और बढ़ाकर 32% तक किया जाना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना लागू की है, जिसके आशातीत परिणाम संभावित हैं। प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए अब राज्य में हरित पंचायतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पहल राज्य भर के अनाथों और विधवाओं के कल्याण एवं उत्थान में भी योगदान देगी। इससे न केवल नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को भी सहयोग होगा। इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित और ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को जाएगा। 20% परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए हिम ऊर्जा को आवंटित हो जाएगा और 10% हिम ऊर्जा को मिलेगा।
25% संबंधित ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा और शेष 25% सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे संबंधित ग्राम पंचायत के अनाथों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये तो हमने की हिमाचल की बात की, हिमाचल किस तरह से प्रयासरत है कि अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वन क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो अब आपके साथ और भी समाचार हम साझा करेंगे समाचार पत्रों से, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब कार्यक्रम में कुछ और ताज़ा तरीन खबरों से आपको अवगत करवाते हैं। भारतीय वायुसेना का सुखोई SU-30 MKI फाइटर जेट पहली बार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। नए एयरपोर्ट पर किसी फाइटर जेट की ये पहली लैंडिंग है। जी, एक और खबर की बात करें तो जाने माने संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सी कश्यप का गुरुवार को कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। 10 मई 1929 को यूपी के बिजनौर जिले में जन्मे कश्यप ने 100 से अधिक पुस्तकें व 500 से अधिक शोध लेख लिखे हैं। उन्हें 2015 में पद्म भूषण मिला था। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे और वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्य भी थे। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में पहली बार पुजारी की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं ने शाम की आरती कराई। केसरिया साड़ियों में हाथों में दीप लिए ये युवतियां मंत्रोच्चार और आरती के भजन गाती दिखी। मंदिर के गर्भगृह में ये बदलाव सदियों पुरानी परंपरा की दीवार तोड़ने जैसा माना जा रहा है।

अगली खबर की बात करते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अस्थिरता के बीच भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग का विस्तार किया जाएगा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को लेकर ऐतिहासिक सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अब वेनेजुएला के साथ सिर्फ खरीदार और विक्रेता का रिश्ता नहीं चाहता। चर्चा का मुख्य केंद्र भारतीय कंपनियों की वेनेजुएला के उत्पादन और शोधन क्षेत्रों में भागीदारी पर रहा। केंद्र सरकार ने सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा नीतिगत सुधार किया है। इसके तहत तीनों सेनाओं के फील्ड कमांडरों के बजट खर्च के अधिकार को 100% तक बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को इससे जुड़े नए वित्तीय अधिकार हस्तांतरण नियम जारी किए। इस बड़े बदलाव के बाद अब चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व बजट सीधे सैन्य अधिकारियों के नियंत्रण में आ जाएगा। देखिए मॉनसून की बात कर रहे हैं। मॉनसून ने देश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के सभी मानक पूरे होने के बाद इसकी आमद की आधिकारिक घोषणा की। इसके साथ ही 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई है, जिससे भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। विभाग के मुताबिक गुरुवार को मॉनसून की उत्तरी सीमा का पश्चिमी सिरा मंगलौर और पूर्वी सिरा थुथुकुडी से गुजर रहा था, यानी मॉनसून केरल के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गया है। कुछ खेल खबरों की बात करें तो देखिए आईपीएल के बाद अब फीफा कप की बारी है। फुटबॉल प्रशंसकों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से होने जा रहा है। कुल 39 दिनों तक चलने वाले खेल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 104 खेल खेले जाएंगे। जी और एक और खबर की बात करें तो वेस्टइंडीज दौरे पर 3 मैच की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने 41 रन से जीत दर्ज की है। टीम ने यहाँ 13 साल बाद कोई वनडे मुकाबला जीता है। और एक और खबर की बात करें तो गुरुवार को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुआ पहला टेस्ट कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। ये लॉर्ड्स पर खेला जाने वाला 150वां टेस्ट था। अन्य किसी मैदान पर 118 से ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं।

एक और खबर की बात करें तो इटली के मटोआ अर्नाल्डी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में उनके हमवतन मटेओ वेरेटिनी चोट के कारण बीच मैच से हट गए। अब सेमीफाइनल में उनका सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से होगा। अर्नाल्डी 29 साल बाद फ्रेंच ओपन में के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

जी एक और खबर की बात करें, लंबी कूद खिलाड़ी शैली सिंह, पोल वाल्टर, देव कुमार मीना, कुलदीप कुमार और जेवलिन थ्रोअर शिवम लोहाग्रे एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 54 सदस्यीय टीम घोषित की है। तो ये थी आज के समाचार पत्रों से कुछ ताजा तरीन खबरें, साथ ही खेल खबरें भी आपके साथ साझा की। और अब इसी के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सभी को कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है थोड़ी देर में समाचार प्रभात और 8:15 मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
5: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
5: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।

0: कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस अंक में करसोग में जनगणना 2027 के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वीरवार एसडीएम गौरव महाजन की अध्यक्षता में जनगणना कार्य से संबंधित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए पहले चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 4 से 6 जून तक 100 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और दूसरे चरण में 10 जून से 12 जून तक 66 कर्मचारियों सहित कुल 166 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जनगणना संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि जनगणना सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय गतिविधियों में से एक है, जिसके आधार पर विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण किया जाता है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को जनगणना कार्य को गंभीरता, निष्पक्षता एवं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस योजना के तहत जो कुपोषित बच्चे होंगे उन्हें पोषण देने के लिए इस अभियान से जोड़ा गया है। यदि इसके परिणाम सही रहे तो जिले के दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी इस योजना को बड़े स्तर पर शुरू किया जा सकेगा। मोटे अनाज का एक रूप रागी का लड्डू में कुपोषित बच्चों को भरपूर और सही पोषण दे सकेगा। जो योजना तैयार हुई है उसके तहत इन बच्चों को रागी का लड्डू देकर ये आकलन किया जाएगा कि वे कुपोषण से कितनी जल्द इसके दायरे से बाहर आए हैं। दरअसल ये रागी का लड्डू काले रंग के मोटे अनाज मंडल से तैयार किया जाता है। इसे पौष्टिक गुणों से भरपूर माना गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 454 बच्चों को ट्रेस किया गया है जिन्हें इस अभियान के साथ जोड़ा गया है और विभाग की ओर से लगातार इस पर अब मॉनिटरिंग भी होगी। स्वास्थ्य खंड गलोड़ के तहत टीबी रोग की समय पर पहचान और रोकथाम के उद्देश्य से टीबी एक्सरे स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। शिविरों में लोगों की मुफ्त एक्सरे जांच के साथ टीबी संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा। 5 जून को करदो, 6 को मालग, 7 को जरेड़ी, 8 को कारगू, 9 को बरहालड़ी, 10 को टुधाना और 11 तारीख को रतेड़ा, 12 को करैर, 13 को कथालग और 14 को अबहा उपरला और 15 को मक्कड़, जबकि 16 जून को पंजरार में शिविर लगाया जाएगा। 17 जून को डगवार, 18 को घंटोली और 19 को री, 20 तारीख को पलासी, 21 को भंदरू और 22 जून को साहबी, 23 को लंजियाना और 24 जून को फारसी में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाएंगे। हमीरपुर के सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर का हिमाचल प्रदेश प्रवास 6 जून को अंब ऊना जिले में होगा और इस दौरान वे सुबह 6 बजे अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से गुरमुखी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर नए रूट के लिए रवाना करेंगे। जी, वे क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान सांसद क्षेत्र की जनता को रेलवे नेटवर्क से जुड़ी एक बड़ी सौगात सौंपेंगे और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे हमीरपुर के करियाली में स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और जन समस्याएं सुनेंगे। हिमाचल डायरी के आज के संक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

कुछ कुछ होता है इस मूवी के सॉन्ग से हमने शुरुआत करी कार्यक्रम चित्रलोक की। उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत। श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम भी देखिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझना और उनके समाधान के लिए लोगों को प्रेरित करना, यानी सामूहिक रूप से कुछ कार्य करना और समझना। वर्ष 2026 के वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की क्या थीम थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोगों को कम करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना था। और इस ओर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ हमारे कर्तव्य जो होते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, हम जानते हैं ना। बिजली और पानी की बचत भी करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, ऊर्जा की बचत करनी होगी, कचरे को अलग अलग करके रिसाइकल करना होगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना होगा, भोजन की बर्बादी को रोकना होगा, कागज का उपयोग कम करना होगा। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कागज की बचत होने ही वाली है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये हमारे योगदान के लिए बहुत ज़रूरी है। स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद अपनाने की ज़रूरत है। दूसरों को भी पर्यावरण और संरक्षण के लिए जागरूक करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी दैनिक जीवन शैली में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा भरा वातावरण बना सकेंगे।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मिशन मजनू फिल्म का ये गीत, शब्बीर अहमद के लिखे बोल, तनिष्क बागची का संगीत, जुबीन नौटियाल की आवाज़।

श्रोताओं, अभी जेठ का दशहरा यानी गंगा दशहरा मनाया गया, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को जिसे मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं या फिर जो नहीं जा पाते हैं वो घर पर ही गंगा जल रखते हैं और उसी को पानी में मिलाकर और उसी से स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन जो स्नान होता है उसे अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर दशविध स्नान का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसमें शरीर से किए गए 3 प्रकार के पाप, वाणी से जुड़े 4 प्रकार के पाप और मन से किए गए 3 प्रकार के पाप शामिल माने जाते हैं। इस तरह गंगा दशहरा का स्नान आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है।

गंगा दशहरा की बात हो रही थी, इसलिए चंद्रानी मुखर्जी और साथियों के स्वर में गंगा माँ पर आधारित ये सॉन्ग हमने आपको सुनवाया है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत बेवफा फिल्म से, उदित नारायण की आवाज़, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझे

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चित्रलोक में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर का लिखा और नदीम श्रवण के बनाई धुन पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और पहला IUU दिवस।

मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से, दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जैव विविधता, समुद्री संसाधनों और उन मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: श्रोताओ, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:18 और 30 सेकेंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज शिमला में एंटी चिट्टा व पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी को करने होंगे प्रयास। नशे के खिलाफ पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। और प्रदेश के कई स्थानों पर आज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको सुबह 6:30 बजे राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवा विद्यार्थी, शिक्षण संस्थान, सरकार विभाग, स्वयंसेवी संगठन, महिला मंडल, खेल संगठन और आम नागरिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली, फिटनेस, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इस बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मैराथन के दौरान उपस्थित युवाओं व लोगों को पर्यावरण संरक्षण व नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और इस धरती माँ के संरक्षण के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस के प्रयासों व युवाओं की भागीदारी की भी सराहना की। इस बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश भर में एक माह का पौधरोपण अभियान चलाएगी। इस अभियान में जनभागीदारी से हजारों पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा के अनुसार इस दौरान विभिन्न जिलों, मंडलों व बूथ स्तर तक पौधरोपण कार्यक्रम के जरिए आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा नेतृत्व सहित जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पौधरोपण करेंगे। दूसरी ओर आज प्रदेश भर में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, महिला युवक मंडल व अन्य लोग पौधरोपण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। नीरज भारती ने लिखा है कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर असंतोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि नीरज भारती के पिता चंद्र कुमार प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के इन आदेशों के बाद विधायक संबंधित नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। न्यायालय ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करें। यह चुनाव केवल निर्वाचित पार्षदों की इच्छा और बहुमत के आधार पर ही होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। लाहौल स्पीति जिले की दूरस्थ पीन वैली में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर व आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा इंटरनेशनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जहां कई इलाकों में ग्रामीण लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, वहीं विद्यालयों में विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के उद्देश्य से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: स्पीति के दूरस्थ पीन वैली में सेवा इंटरनेशनल द्वारा 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर और आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बहार इन्फोकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से चलाया जा रहा है। पुंगरी गांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सगनम के मेडिकल टीम ने ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। शिविर में डॉक्टर तशी दोरजे और फार्मासिस्ट रतन बोस सहित स्थानीय स्वयंसेवकों ने सेवाएं दी। वहीं सगनम और गुलिंग केयर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण ब्लैक बेल्ट कराटे विशेषज्ञ राजेंद्र कुमार ने दिया। सेवा इंटरनेशनल ने बताया कि आने वाले दिनों में मुद तेलिंग और आसपास के अन्य गांवों में भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव का विकास और जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी विशेष प्राथमिकता है। ये बात उन्होंने ग्राम पंचायत द्रमण के शिव मंदिर सुभाष नगर परिसर में नव निर्मित शेड के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में जमीनी विकास के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे अहम होती है। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के साथ साथ चंबा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जल स्रोतों की स्वच्छता व संरक्षण को लेकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पर्यटन नगरी डलहौजी स्थित सुभाष बावली में जल स्रोतों की सफाई के साथ इसके संरक्षण को लेकर लोगों को भी जागरूक किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: जल स्रोतों के संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति

0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया गया ये विशेष अभियान काबिले तारीफ है। इस अभियान के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्कूलों में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों तथा NDPS अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि युवा पीढ़ी को इससे दूर रखकर शिक्षा, खेल एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर किया जा सके। ऐसे अभियान समाज में बदलाव लाने के लिए काफी सार्थक साबित होंगे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं रुककर वर्षा का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में आज अंधड़ बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा, कांगड़ा और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया है। कल 6 जून को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी चलने की आशंका है। मौसम के तेवरों से तापमान में गिरावट आने से निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं किसान इस बारिश को मक्की की बिजाई के फायदेमंद बता रहे हैं।
2: मेरा नाम भगत राम शर्मा, यही मांझो का निवासी हूँ। हमारे खेतों में नमी हो गई है, बाज पड़ी है और खेती अच्छी बिजाई कर रहे हैं। आशा है कि और बारिश हो जाएगी 2-4 दिन में तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारे सब लोगों की खुशी होगी।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुर्खी दी है, नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में विधायकों को वोट डालने का अधिकार नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है, नगर परिषद, नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। पंजाब केसरी ने खबर दी है, हिमाचल में लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जे नियमित करने की नीति तैयार। वहीं दिव्य हिमाचल के शब्द है, रेगुलर होगा छोटे किसानों का भूमि अतिक्रमण, 20 बीघा की अधिकतम सीमा के साथ सरकार की नई पॉलिसी तैयार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज शिमला में एंटी चिट्टा व पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी को करने होंगे प्रयास, नशे के खिलाफ पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व CPS नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। और प्रदेश के कई स्थानों पर आज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे।
4: ये गाना
5: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
4: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
5: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा।

0: का अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।
1: वो मेरा यार है, रब वरना।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था, लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो

सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
3: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है आज की लघु वार्ता। आज की लघु वार्ता का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस।

आज की लघु वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की लघु वार्ता का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करना और बढ़ते हुए पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग पर ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1972 में की गई थी और इसे पहली बार 1973 में मनाया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। और बात करिए कि इस वर्ष यानी 2026 का जो फोकस है वो किस बात पर है, तो इस वर्ष का ध्यान मुख्य रूप से क्लाइमेट एक्शन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले जमीनी समाधानों पर केंद्रित है इस वर्ष की थीम। भारत में इस अवसर पर कई जगहों पर पौधारोपण अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधे लगाए जाते हैं। हर साल 5 जून का दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण के दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निबंध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिताएं जो हैं वो करवाई जाती हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की एक खास थीम होती है और विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की भी थीम है, वो है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। और ये जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े कदमों पर केंद्रित है।

जी, और देखिए हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण है दूषित होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, खराब हवा लोगों का दम घोंट रही है, शहरों में बहुत से लोगों को बदतर आबोहवा से के चलते लोगों को जो है वे सांस हृदय फेफड़ों की बीमारियों से जो है जूझना पड़ रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि संपूर्ण मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना मानव समाज की कल्पना अधूरी है। और देखिए पृथ्वी ग्रह पर ही मानव जीवन संभव है, इसलिए इसे जीने लायक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे ग्रह के सामने मौजूद तीन खतरों को और भी बड़ा बनाता है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण। हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जल पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित करता है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए और हमें जो प्लास्टिक से होने वाला कचरा है उसे कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उसे हमें बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। इसकी वजह से जो है वो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण हो रहा है और साथ ही साथ हमारी हवा तो प्रदूषित होती ही है। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए हमें कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए ये दिन मनाया जाता है पर्यावरण के प्रति हमारी जो जागरूकता है उसे हम बढ़ाएं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिनका संकल्प लें अगर हम तो हम वो कर सकते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक या पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, कागज या कपड़े से बने थैले का इस्तेमाल करें, और हमें चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, और एक क्या आप जितने लगा सकते हैं उतने पौधे लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगेंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी बात वही होगी। तालाब, नदी, पोखर, किसी भी प्रकार के जल को प्रदूषित नहीं करें, जल का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। और देखिए जहाँ तक बात बिजली की है तो बिजली का अनावश्यक उपयोग भी हम नहीं करें। इस्तेमाल के बाद बिजली से जुड़े हुए सभी उपकरणों को हम बंद रखें और कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। अगर नज़दीक कहीं जा रहे हों आप तो वहाँ जाने के लिए आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सही रहेगा और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण में भी आप उसे कम करने में अपनी भागीदारी आप दे सकते हैं। ये बातें सिर्फ जुबानी या किताबों में ना रह जाएं, बल्कि हमें जीवन में ये बातें उतारनी होगी। प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी है हमें, और पर्यावरण के संतुलन कायम रखने से ही जीव और मानव का विकास संभव है। ये बात हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए और इस पर हमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। सोलर ऊर्जा का जो है वो प्रयोग बढ़ाना होगा, ऊर्जा का अनावश्यक खर्च ना करने की आदत हम सभी को डालनी होगी, साथ ही साथ जल संसाधनों की बचत करना बहुत ज़रूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने इंसान को पैदा किया और अपने अस्तित्व के लिए इंसान को उसकी ज़रूरत है। प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं,

आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण इस संतुलन को खतरे में डाल रहा है। प्रदूषण जो है वो प्राकृतिक हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट या मानव निर्मित, जैसे कारखानों, वाहनों या प्लास्टिक कचरे से निकलने वाला धुआं, और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रदूषण का कारण बनती हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो इससे वातावरण ज़्यादा दूषित होता है, जिससे जो है वो स्वास्थ्य और जलवायु प्रभावित होती है। जल प्रदूषण की बात करें तो जलीय जीवन को नुकसान ये पहुंचाता है और स्वच्छ पेयजल की मात्रा को जो है वो कम करता है। साथ ही मिट्टी के प्रदूषण की बात करें तो ये प्रदूषण जो होता है ये मिट्टी की उर्वरता को कम करता है और फसलों को दूषित करता है। बिल्कुल जी, तो पर्यावरण संरक्षण के महत्व को हम सभी को समझना होगा। स्वस्थ वातावरण जीवन के लिए आवश्यक है। पौधे ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं, जबकि जीव जंतु पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसी भी असंतुलन के विनाशकारी परिणाम जो हैं वो हो सकते हैं। तो पर्यावरण की रक्षा से भोजन, जल और वायु की गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित होती है, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को सहारा मिलता है। तो आज के दिन हम सभी को ये संकल्प लेना है कि हम पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम हम उठाएं। तो ये थी आज की लघु वार्ता और विषय था पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:15 हो चुके हैं और लीजिए अप्रस्तुत है कार्यक्रम महफिले कव्वाली।

महफिल कव्वाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कातिलों के कातिल फिल्म से ली गई इस कव्वाली के साथ।

0: अगर आवाज दे दूं फलक पे तारे थम जाएं, हजारों चांद चिलमन छोड़ कर बाहर निकल आए।
1: इनसे कह दो वो कोई और होंगे।
0: तो फिर आप क्या हैं?
1: मैं वो

0: खुद को संभाल, तुझ में ताकत कहाँ कि तू खुद को बचा ले। खैर जो अपनी चाहे,
1: खैर जो अपनी चाहे,
0: ना आगे बात बढ़ाना,
1: ना आगे बात बढ़ाना।
0: क्षमा को भी चाहूँ तो बना दूँ पल भर में परवाना। बना

अनवर, हेमलता और साथियों की आवाज़ों में ये कव्वाली अभी आपने सुनी कातिलों के कातिल फिल्म से, इसे हमने लिया था महफिल कव्वाली। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। दोस्तों, कव्वाली सिर्फ संगीत नहीं बल्कि भावनाओं, मोहब्बत, सूफियाना रंग और रूहानी एहसास का ऐसा संगम है जो सीधे दिल तक पहुँचता है। ऐसी ही एक और कव्वाली आइए सुनते हैं, दिल ही तो है फिल्म से, आवाज़ आशा भोंसले की, आइए सुनते हैं।

महफिल कव्वाली कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं। और दोस्तों, अब कार्यक्रम में एक ऐसी कव्वाली जिसे जितनी बार सुनो बस सुनते ही जाओ ऐसा मन करता है, इतना सुकून है। और देखिए, सुकून भरी आवाज़ मन्नाडे की है, लेकिन इसमें कव्वाली के पूरे रंग देखने को मिलते हैं और साथ ही इसमें रंग है दोस्ती का, यारी का। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये जो कव्वाली है जंजीर फिल्म से है और आवाज़ मन्नाडे की। आइए सुनते हैं।

जी, इसी कव्वाली के साथ आज का कार्यक्रम महफिल कव्वाली यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले कवाली। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 10:45 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां दा अहें स्वागत करदे अज दे इस कार्यक्रम च। श्रोतियो, इस कार्यक्रम च मैं तुहां कन्ने तुहां दी अपनी रेडियो दोस्त नेहा। वे श्रोतियो, प्रकृति दे जिहड़े रंग हुंदे ना, इह जे सा जीवन जो बड़ा अनोखा बनाई दिंदे। एड़ी जिहड़ी जी थीम हुंदी, इह अहां जो याद करांदी कि अहां दा जीवन जी असे प्रकृति सौगी हर रंगां ने जुड़िया। आओ सुनदे हां इस कार्यक्रम दा पहला लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हरियाली दे रंगा सौगी, धरती माँ जैसे सजदी संवरदी रहंदी, प्रकृति दे संग चलिए ता जिंदगी होर भी सुंदर लगदी। पहाड़ां दी ठंडी हवा च जीवन दा एक संदेश बसदा है, नदियां दी कल कल धुना च खुशियां दा संगीत बसदा। आवा सुनदे हन ये आखरी लोक गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको सुबह 6:30 बजे राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवा विद्यार्थी शिक्षण संस्थान सरकार विभाग स्वयंसेवी संगठन महिला मंडल खेल संगठन और आम नागरिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली फिटनेस अनुशासन पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इस बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मैराथन के दौरान उपस्थित युवाओं व लोगों को पर्यावरण संरक्षण व नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और इस धरती माँ के संरक्षण के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस के प्रयासों व युवाओं की भागीदारी की भी सराहना की।
2: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सकता।
0: इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
3: विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प ले, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें।
0: पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण

0: संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश भर में एक माह का पौधरोपण अभियान चलाएगी। इस अभियान में जनभागीदारी से हजारों पौधे रोपे जाएंगे। प्रदेश भाजपा के अनुसार इस दौरान विभिन्न जिलों, मंडलों व बूथ स्तर तक पौधरोपण कार्यक्रम के जरिए आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा नेतृत्व सहित जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पौधरोपण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। नीरज भारती ने लिखा है कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर असंतोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि नीरज भारती के पिता चंद्र कुमार प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के इन आदेशों के बाद विधायक संबंधित नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। न्यायालय ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करे। यह चुनाव केवल निर्वाचित पार्षदों की इच्छा और बहुमत के आधार पर ही होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दिन के 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम ख़त्म होता है। रंग

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे।
2: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 12 बजे हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता मंडल।
3: वनिता मंडल, वनिता मंडल।

0: किसी ने क्या खूब लिखा है, सबकी झोली भरती है फिर भी कुछ नहीं कहती है। ये धरती हमारी माता है जो निस्वार्थ भाव से सहती है। वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों और अन्य तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी नेहा मिश्रा, और मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में हैं
1: जी मैं प्रकाशा, और हम दोनों की तरफ से हमारी सभी सखियों को नमस्कार। जी नेहा, देखिए इतनी अच्छी पंक्तियां आपने कही हैं और आज के दिन को तो पूरी तरह से ये सार्थक कर दी हैं, है ना
0: जी।
1: तो आपने अगर इतनी अच्छी पंक्तियां कही हैं तो अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ मैं भी तो कुछ जरूर साझा करना चाहूंगी।
0: जी जरूर,
1: है ना, एक शायराना अंदाज में कि पेड़ों की छांव में सुकून का बसेरा है, नदियों की लहरों में जीवन का सवेरा है
0: जी।
1: संभाल कर रखो इस प्रकृति की दौलत को, यही तो आने वाला कल का सहारा है।
0: जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी ये मुलाकात है, ये चर्चा है, ये बहुत बड़े संकल्प का गवाह बनने जा रही है। देखिए ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देती है, हवा, पानी, अन्न और छांव, वैसे ही ये धरती माँ हमें भी सब कुछ दे देती है, यही हमें पालती है। लेकिन आज वक्त आ गया है कि हम सिर्फ लेने वाले ही ना बने बल्कि देने वाले भी बने, रक्षा करने वाले भी बने, अपनी इस धरती माँ को सुरक्षा प्रदान करने वाले भी बने।
1: बिल्कुल नेहा, सच पूछो तो धरती माँ और माँ में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है, है ना। जैसे माँ हमें सब कुछ देती है, हमारी जो धरती है ये भी हमें सब कुछ देती है। हमने पानी मांगा, धरती माँ ने नदियाँ दे दी। हमने साया मांगा और उसने घने जंगल दे दिए। हमने भूख मिटानी चाहिए और उसने अपने सीने को चीर कर हमें अनाज दे दिया।
0: जी,
1: धरती ने हमें सब कुछ दिया है पर बदले में हमने क्या दिया,
0: जी
1: सोचने वाली बात यह है कि हमने क्या दिया, है ना।
0: और बड़ी गंभीरता से अगर सोचा जाए तो हमें लगता है प्रदूषण, प्लास्टिक और सूखा, शायद ये वो चीज़ें हैं जो नकारात्मकता हमने अपने इस धरती माँ को दी है।
1: लेकिन क्या ये देकर हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें अब उतना ही प्यार देगी या उतना ही अपनापन, वो जो हम मांगे वो मिलेगा हमें?
0: ऐसा तो कभी भी नहीं होता।
1: हाँ,
0: कि जब बच्चे अपनी माँ का दिल दुखाएं तो बच्चे हर फरमाइश जो है वो पूरी कर पाएं, अपने माँ बाप से हर वो इच्छा

0: पूर्ति कर पाएं। जब कभी बच्चे कुछ परेशान नहीं करते हैं अपने माँ बाप के लिए क्रिएट, या फिर कोई उनकी बात नहीं मानते हैं, तो बदले में कहीं ना कहीं बच्चों का दिल भी दुखता है। माँ बाप वो चीज़ उनसे थोड़ी सी छीन लेते
1: जी
0: हैं।
1: जी क्योंकि उन्हें उस समय वो एक सबक उन्हें सिखाना होता है, एक लेसन उन्हें देना है कि जो सही है अगर वो हम नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां जो है सामने ज़रूर आएंगी।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमें इन चीज़ों के लिए रोना नहीं है जैसे
1: जी
0: बच्चे रोते हैं, जिद
1: हाँ
0: करते हैं,
1: बिल्कुल
0: बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझना है, क्योंकि धरती हमें सब कुछ देती है। अब इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जब एक महिला ठान लेती है तो वो पूरे परिवार को बदल देती है।
1: जी
0: और जब आज के इस कार्यक्रम में पूरा वनिता मंडल, सभी सखियाँ एक साथ जब आएंगी, मंच पर आएंगी, तो हम, लगता है कि इस धरती की तस्वीर को बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल बदल सकते हैं नेहा। और देखिए हमारी बहनें कुछ ठान लें और कर ना पाएं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है ना।
0: जी
1: जिस तरह हम अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखने का एक जब चाहती हैं कि रखना ही है उन्हें सुरक्षित, तो दिन रात हम एक कर देती हैं, तो वैसे ही हम इस धरती माँ के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी ज़रूर हम निभाएंगे और निभानी ही है हमें। हम सबको एक दूसरे को प्रेरित करना है और इसीलिए तो हम खास तौर पर आज ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है 5 जून और आज का दिन है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप
0: जी,
1: में।
0: और ये दिन हर नागरिक को प्रकृति की रक्षा करने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए
1: बिल्कुल
0: प्रेरित करता है। मगर आज पर्यावरण संरक्षण केवल नारों या पोस्टरों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रह गया
1: जी
0: है ना, बल्कि हमारी जो स्मार्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल का जो है, वो ये हिस्सा भी बन चुका है, जिसे नई पीढ़ी ट्रेंड के रूप में अपना रही है।
1: देखिए ना, अगर एक बहुत ही आसान सी बात मैं अगर समझाऊं नेहा, तो अगर हम किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो आज के वक्त की अगर हम बात करें तो इसे एक ट्रेंड बना दें, और जब ये ट्रेंड हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते हैं।
0: जी बिल्कुल प्रकाशन जी, अब जैसे देखिए ना, आजकल लगभग हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल
0: और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ एक्टिव हैं
1: जी जी
0: हर एक वर्ग जो है, चाहे युवा वर्ग की बात कर लीजिए, चाहे हर किसी वर्ग की, तो वो सभी जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और देखा जाए तो आजकल लगभग हर कोई रील बनाना बहुत पसंद भी करता है,
1: जी बिल्कुल
0: अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। ऐसे में क्यों ना, मतलब हम भी पुराने कपड़ों, बोतलों या फिर डिब्बे जो होते हैं उनको फेंकने की बजाय कुछ उनको नया रूप दें,
1: जी जी
0: उनकी रील बनाएं। जैसे कोई टी शर्ट है या फिर कोई कांच की बोतल है, तो उसका प्लांटर हम बना सकते हैं, लाइट डेकोरेट भी हम बदल सकते हैं उसमें।
1: जी
0: और
1: जी
0: इससे ना सिर्फ हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी अलग एक पहचान भी बना सकते हैं। क्योंकि जब हम इस तरह का कोई डेकोरेट करके कोई चीज़ जब सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं और
1: जी
0: फिर डिमांड भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उसे कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं कि जब ये कर सकते हैं हम भी कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करें।
1: जी बिल्कुल। और इस तरह से हम जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इस अभियान एक तरह का बन जाएगा ये कि हम इन चीज़ों को जो है, जैसे प्लास्टिक की हमने बात की, तो प्लास्टिक की बोतलें हैं या कोई पुरानी ऐसी घर में रखी हुई चीज़ें, उनको आप नया आकार दें, नया रूप दें। टैलेंट आपका निखरेगा वो अलग है, और जो एक ट्रेंड के रूप में चलेगा वो अलग है। इस तरह से आप अपने आप को एक आर्थिक तौर पर भी मजबूत बना सकते हैं, है ना। तो
0: जी
1: ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ में देखिए क्लाउड किचन, अगर हम महिलाओं की बात करें ना, हम अपने साथ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम जोड़ सकते हैं और किन चीज़ों के ज़रिए जो है वो हम अपना योगदान दे सकते हैं, मेन बात तो वो है।
0: जी
1: तो देखिए अगर बहुत सारी बहुत बड़ी ज़मीन भी नहीं है मान लो, तो हमारे घरों में हम क्या करती हैं महिलाएं खास तौर पर, अपने बालकनी में या अपने घर के बाहर बरामदे में या कहीं भी अपनी छत पे वो छोटे छोटे गमलों में हम क्लाउड किचनिंग किचन जो वो किचनिंग कर लेती हैं, है ना।
0: जी
1: कहीं धनिया बो दिया या कहीं कोई हमने पुदीना लगा दिया या और ऐसी कोई चीज़ें, कोई प्लांट्स हमने लगा दिए, तो वो क्या है, वो एक तरह से प्रकृति प्रेम है और उसके साथ हम जुड़ सकते हैं।
0: जी प्रकाशन जी, और जिस तरह से हम अपने आसपास यदि पेड़ पौधे देखेंगे, तो ये हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: पौधों की देखभाल करना ये हमें मानसिक शांति भी देता है, सुकून भी देता है, और ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारे आसपास हमें सुनने वाला भी है।
1: बिल्कुल। और देखिए प्रकृति के

0: कितना सुंदर पहाड़ है, कितने सुंदर झरना है,
1: जी
0: वहाँ
1: जी
0: जाके लोग किस तरह से रील्स बना रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, नई नई प्रकृति के जो रूप हैं वो हमें दिखाते हैं। तो
1: जी
0: एक ट्रेंड ये भी आजकल चल पड़ा है कि जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो नो प्लास्टिक ट्रेंड, है ना।
1: बिल्कुल
0: नई पीढ़ी को एस्थेटिक चीज़ें पसंद हैं,
1: जी
0: ऐसे में क्यों ना पर्यावरण अनुकूल चीज़ों को ही स्टाइल में बना लिया जाए।
1: जी बिल्कुल
0: प्लास्टिक की एस्थेटिक बोतलें जो होती हैं, जब मतलब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो जहां हम पहले प्लास्टिक की बोतल लेना प्रेफर करते थे, वहां अब कॉपर की जो है वो कहते हैं ना कि कॉपर के कंटेनर में अगर हम पानी डालें और सुबह उसको पिएं तो वो और ज़्यादा जो है वो पौष्टिक तत्व तो उसमें आ चुके होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और सारे गुण उसमें आ चुके होते हैं।
1: जी
0: तो नई पीढ़ी इसे ट्रेंड बना सकती है और धरती पर लगातार जमा हो रहे प्लास्टिक कचरे को भी कम कर सकती है।
1: बिल्कुल कम कर सकते हैं। और देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत इससे बेनिफिट होगा हमारे पर्यावरण को। अब देखिए, डिजिटल डिटॉक्स की अगर हम बात करें ना, तो वो भी बहुत ज़रूरी कदम है एक तरह से। देखिए,
0: बिल्कुल
1: हम मोबाइल अपना यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के वक्त में इन चीज़ों से दूरी तो हम बना नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इनके साथ हम निकटता भी बनाएंगे तो वो भी कई बार थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए इन चीज़ों को, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम छोड़ देते हैं अपने मोबाइल को हमेशा, रात भर के लिए कई बार चार्जिंग पे छोड़ देते हैं, सो जाते
0: जी
1: हैं, नींद में कौन सा हमें वो लगता है कि वो चार्ज हो गया नहीं हुआ, है ना, और सुबह ही देखा जाता है। फिर क्या होता है, लैपटॉप का भी सेम हम वैसा ही करते हैं, या फिर ऐसे ही कोई और उपकरण है उन्हें हम यूज़ करते हैं और कई बार ऐसे ही छोड़ भी देते हैं उन्हें, ना
0: जी
1: उन्हें ऑन ही हम छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऊर्जा की तो, बिजली की तो खपत बढ़ती है, और वो अनावश्यक खपत जो हम करते हैं उसे हम कम करें।
0: जी इससे पर्यावरण पर भी बुरा
1: बिल्कुल
0: प्रभाव
1: जी
0: पड़ता
1: जी
0: है। वहीं सस्टेनेबल शॉपिंग चैलेंज भी आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी जी
0: जब हम कहीं शॉपिंग करते हैं तो अमूमन हम जो भी चीज़ लेने जाते हैं उसे हमने कहीं ना कहीं देखा होता है,
1: बिल्कुल
0: और महिलाएं तो अक्सर ऐसा ही करती
1: जी
0: हैं
1: जी
0: कि कोई चीज़, कोई सूट हो गया या साड़ी हो गई या कोई ड्रेस हो गई ऐसी जो किसी खास के पास है, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम भी उसे खरीदें।
1: हाँ
0: लेकिन प्रकाशा जी, एक वो वक्त भी हुआ करता था जब किसी खास के पास वो चीज़ होती थी तो हम बेझिझक उनसे मांग भी लेते थे,
1: बिल्कुल
0: मांग भी
1: हाँ
0: लेते थे कि क्या मुझे ये आपकी ड्रेस मिल सकती है, मेरे किसी दूर दराज के रिश्तेदार के घर फंक्शन है और मुझे जाना है, और हम बेझिझक दे भी देते थे क्योंकि
1: जी
0: हम महसूस करते थे कि हाँ, जैसे हमें इस ड्रेस को पहनने से बहुत खुशी मिली है, हो सकता है सामने वाले को भी वो खुशी जो है वो चाहिए।
1: जी जी
0: और अब समय आ गया है कि हम सोचते हैं हम क्यों मांगे, हमारे पास खुद के पैसे हैं, हम खुद जाएंगे शॉपिंग करेंगे, ऐसी ही खूबसूरत और खूबसूरत बल्कि ड्रेस खरीद कर लाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक तरह से पैसों की बर्बादी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए, एक बार वो हम पहन लेते हैं ड्रेस कहीं, एक फंक्शन में हमने पहन ली, शादी में पहन ली या कहीं और, तो फिर हमें लगता है दूसरी बार कहीं फिर से पहनेंगे, तो इससे हम और नई ड्रेस लेना जो हम पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी बहनें ज़रूर रिलेट कर रही होंगी कि जब हम छोटे थे या थोड़े बड़े भी थे, अपनी अगर परिवार में बहनें हैं या कोई कज़न सिस्टर्स हैं, तो एक दूसरे की ड्रेस लेकर हम ज़रूर वो एक्सचेंज करते थे, है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: एक्सचेंज करते थे और
1: और
0: इससे प्यार भी बना रहता
1: हाँ
0: था,
1: जी जी
0: पैसे की बचत भी होती थी और जो एक फैशन था वो भी बना रहता था
1: बिल्कुल
0: और पर्यावरण पर काफ़ी बोझ भी नहीं पड़ता था।
1: बिल्कुल
0: तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली जो हैं वो हमारी प्रकृति से ही संबंधित हैं, उसी से
1: जी
0: जुड़ी हुई हैं। तो ये जितनी भी बातें हमने की, चाहे वो सस्टेनेबल शॉपिंग चैलेंज की हो,
1: जी
0: डिजिटल डिटॉक्स की हो, नो प्लास्टिक ट्रेंड की हो, या फिर क्लाउड किचन गार्डन की, या फिर रील बनाने की हो, ये
1: जी
0: सारी बातें अगर हम थोड़ा सा अपने अमल में लाएं तो मुझे लगता है आज के दिवस का जो महत्व है वो हम कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे।
1: बिल्कुल जी। और देखिए, प्रकृति के साथ जुड़ाव जो है वो कितना ज़रूरी है ये हम समझ पाएंगे। अब देखिए, बातें हो गई नेहा बहुत सी, और अब मनोरंजन की बात करते हैं, तो उसके लिए तो प्यारी से गीत हैं।
0: जी, मनोरंजन करवाएंगे हम अपनी सखियों का, श्रोताओं का इस गीत के साथ, क्योंकि देखिए ना, जैसे प्रकृति हरी भरी रहती है तो हर एक प्रकृति का जो अंश है वो उसे खूब इंजॉय करता है।
1: जी
0: आइए इस गीत के जरिए हम भी सुनते हैं कि ये पंछी क्या कहना चाहते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी बिल्कुल, देखिए इतना खूबसूरत सा गीत नेहा। देखिए पंछी, भंवरे और भी सारे जीव जंतु तभी मुस्कुराएंगे अगर हमारा पर्यावरण मुस्कुराता हुआ होगा, है ना, स्वच्छ होगा। और देखिए अब इसके साथ ही अब एक और जानकारी अपनी बहनों के साथ आज हम साझा करने वाले हैं, जो कि आज के दिन को और भी इसके साथ हम रिलेट करेंगे कि आज का जो दिन है ये मनाया जाता है अवैध, असूचित और अनियंत्रित मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
4: जी, और अब हमारी सखियां जो हैं वो ये सोच रही होंगी कि हम तो भाई घर संभालने वाली हैं, महिलाओं का मछली पकड़ने या फिर नदियों से समंदर से क्या लेना देना। लेकिन अपनी सखियों को बता दें कि नदियों की सेहत, समुद्र की सेहत, ये जो है हमारे किचन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। किचन का बजट, हमारे बच्चों की सेहत और हमारी धरती का भविष्य, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और देखिए आसान शब्दों में अगर हम समझें तो अवैध का हमें पता ही है कि मतलब जो बिना इजाज़त के हो, चोरी छिपे हो, तो समुद्र से जाकर जो मछलियां पकड़ना है और बिना इजाज़त के पकड़ना है वो अवैध है इस तरह से। और असूचित है कि जिसकी जानकारी ना दी गई हो, है ना, और मतलब कि सरकार को इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है ताकि टैक्स और नियमों की चोरी बिल्कुल ना हो सके। और अनियंत्रित मतलब बिना किसी नियम के छोटे बच्चों वाली मछलियों को भी पकड़ लेना, जिससे कि भविष्य में मछलियां खत्म हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे कि आपने कहा ना, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ये सारी, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है कि ये चीज़ें रोक पाएँ हम।
4: जी, और वहीं महिलाओं के लिए, अगर सखियों के लिए उदाहरण की बात करें तो ज़रा सोचिए, अगर हमारे घर के बजट या राशन को कोई बिना बताए चोरी से ले जाए, या हम बिना सोचे समझे सारा राशन एक ही दिन में खत्म कर दें, तो आगे का महीना जो है वो कैसे चलेगा?
3: असंतुलित हो जाएगा सब कुछ, हमारा बजट जो है वो बिगड़ जाएगा और भी बड़ी सारी परेशानियां जो है वो हो जाएंगी। तो इस तरह से ये गलत है एक तरह से। तो अगर हमारे घर में ये सब गलत है, तो अगर हमारे समुद्रों से, हमारी नदियों से अगर इस तरह से मछलियों को अनियंत्रित तरीके से अगर पकड़ा जाता है या असूचित या उन्हें अवैध तरीके से पकड़ा जाता है, तो वो भी गलत है। और देखिए जैसे आपने कहा ना कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है ये विषय, क्यों? क्योंकि सेहत और शुद्धता की बात करें तो गलत तरीके से पकड़ी गई मछलियों में केमिकल हो सकते हैं जो हमारे परिवार की सेहत खराब कर सकते हैं।
4: वहीं महंगाई, जब समंदर या नदियों में मछलियां कम होंगी तो मार्केट में सी फूड और अन्य चीज़ें जो वो महंगी हो जाएंगी, और जब ये महंगी हो जाएंगी तो वही हमारे घर का बजट जो है वो बिगड़ेगा ही।
3: बिल्कुल, और देखिए पर्यावरण पे भी इसका वही असर होगा, क्योंकि देखिए समुद्र हमें ऑक्सीजन देता है, अगर समुद्र का संतुलन बिगड़ा तो मौसम बदलेगा, है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बेमौसम बारिश, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी, और जिससे असर जो है हमारे बच्चों के भविष्य पर भी उसका ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं कि जो असंतुलन है वो किसी भी तरह का सही नहीं है, है ना, चाहे वो नदियों में हो चाहे हमारे पर्यावरण में हो, असंतुलित चीज़ें आगे चलकर नुकसानदेह होती ही हैं।
4: और प्रकाशन जी, महिलाओं के रोजगार की अगर बात करें तो तटीय इलाकों में या रिवर बैंक्स में कई महिलाएं ऐसी हैं जो मछली बेचने या उन्हें साफ करने का काम भी करती हैं। अगर मछलियां ही नहीं रहेंगी तो फिर उन बहनों का रोजगार भी छिन जाएगा।
3: जी जी बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऊपर असर डालेंगी। और देखिए क्या हम कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना हों, तो जैसे कि आपने पहले कहा ना कि अगर महिलाएं ठान लें तो क्या नहीं कर सकती, है ना, और अगर एकजुट होकर हम कुछ ठान लें तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगी। तो देखिए एक जागरूक उपभोक्ता बनना बहुत ज़रूरी है। जब भी मार्केट से सी फूड आप खरीदते हैं तो दुकानदार से ये ज़रूर पूछें कि ये कहाँ से आया है और ताज़ा है या नहीं, है
4: ना? और प्लास्टिक का कम उपयोग करें।
3: जी जी,
4: देखिए ना, हमारे घरों का प्लास्टिक कचरा नदियों से होता हुआ तो इन बड़े बड़े समुंदर तक पहुँचता है, जिससे मछलियाँ मरती हैं। हम कपड़े के थैलों का इस्तेमाल जो है वो उसे ज़्यादा बढ़ाएं, उसे ज़्यादा बढ़ावा दें।
3: जी जी,
4: जानकारी बांटना भी बहुत ज़रूरी है। आज जो सीखा वो अपने बच्चों, अपने पड़ोसियों को भी बताएं ताकि नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनी रहे।
3: जी बिल्कुल, और देखिए ये बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे तो ये प्लास्टिक बहकर कहाँ जाता है, पानी में मिलता है, और पानी में जो है वो समुद्रों के, नदियों के ज़रिए या नालों के ज़रिए पहुँचता है, तो मछलियाँ जब इसको खा लेती हैं तो फिर वो उनके लिए नुकसानदेह होती है, और जब उन मछलियों को उपभोग हम करेंगे जो सी फूड खाने वाले जो लोग हैं, तो फिर वो उनकी सेहत के लिए भी वो हानिकारक ही होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, हमारे किचन से जुड़ी हुई हैं, हमारे घर परिवार से जुड़ी हुई हैं।
4: जी, और सखियां इस बात से सहमत होंगी कि एक माँ और एक औरत
3: जी
4: होने के नाते धरती और समुद्र को बचाना हमारा भी फर्ज है।
3: बिल्कुल,
4: तो आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सभी चीज़ों का बहिष्कार करेंगी।
3: बिल्कुल करेंगे, और यही हमें आज सीखना है, इसको अपने संकल्प के रूप में दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। और देखिए अब हमें आगे बढ़ना है, एक गीत सुनना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना,
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: बिल्कुल जी, देखिए बात बिल्कुल सही कही। जिस तरह से प्यार के बिना दुनिया नहीं है, उसी तरह से ये जो दुनिया है ये चलेगी अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, खुली सांस ले पाएंगे, जी पाएंगे हम अगर हमारी हवा जो है वो स्वच्छ होगी। तो अब
1: जी
0: देखिए बातें इस कार्यक्रम में आज हमने इतनी अच्छी की हैं, इतनी ज़्यादा की हैं, और इतनी मुझे भी देखिए नेहा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हमने ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो पर्यावरण से संबंधित अपनी बहनों के साथ साझा की।
1: जी और समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है
0: जी
1: कि
0: जी
1: हम अपनी
0: बिल्कुल
1: सखियों के साथ और चर्चा करें, तो इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं अपनी सभी सखियों से अनुमति और कहते हैं
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: वनिता मंडल, वनिता मंडल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सैनिकों के लिए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके मनोरंजन के लिए कुछ चुनिंदा गीत लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस गीत के साथ।

दिलों में हौसला और नजर में तूफान रखते हैं, सरहद को अपनी सबसे बड़ी शान रखते हैं, जो मिट जाते हैं वतन की हिफाजत की खातिर, हम अपनी हर सांस में उन वीरों का सम्मान रखते हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: और बिस्मिल्दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ने पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे, हाँ, और पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
1: तू नहीं हटता, हाँ? उन्हें दूध देना बंद कर दे।
2: सपने

0: मिलता संदेश कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन उसमें छोटू सुन तेनू बिस्मिल का संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सुन 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लुटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के, उसमें लुटेगा खरीदेंगे।

0: इस बिल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन है और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।
1: बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हस हस रंग दे।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सैनिकों के लिए। सैनिक सिर्फ एक वर्दी नहीं है, सैनिक नाम है त्याग का, तपस्या का और पराक्रम का। वो अपने परिवार, अपनी माँ की ममता, पत्नी के सिंदूर और बच्चों की किलकारियों को पीछे छोड़कर सिर्फ एक रिश्ते को निभाता है, वो रिश्ता जिसका नाम है भारत माता से वतन का रिश्ता।

इस कार्यक्रम के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं बल्कि उनके प्रति कृतज्ञ रहना हम सबका धर्म है। एक सैनिक कभी अपने लिए नहीं जीता, उसका पूरा जीवन इस तिरंगे के नाम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा को। जय हिंद।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, दोपहर का 1 बजने को है। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाज़ा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से, उसके दिल में अजब सा संसार था। एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई, बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज़।

तो भाई ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार, संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थीं। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा है माने जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ, जहाँ दिन भर महुआ पर झूले, रात को चू पड़ते हैं फूल, जहाँ दिन भर महुआ पर झूल, रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहाँ सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ, विहग मृग का हो जहाँ निवास, जहाँ अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी है, काफ़ी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियाँ आ रही, तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफ़र में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना, नदी चंचलता, नीले नंबर अंबर, चांद जब आए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा

हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। ज़रा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था।

तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहें तो रोज़ एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, ज़रा गणना कीजिए। बहरहाल, हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ। हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी। ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है। पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज़, मीठी आवाज़। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थीं और फिजाएं थीं और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, ज़रा उसमें ढूँढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफ़र में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम, और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ ख़ास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे, जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2x4 बताइए, किसकी है आवाज़, किसका है संगीत, और किसका है गीत।

0: दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।
1: ये रातें, ये मौसम।

दिल्ली कठक फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, ज़रा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, ज़रा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग

पर्यटन को जाते हैं, वहाँ के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुँचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियाँ, पहाड़, इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था? हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

देखता ही रहूं मैं सामने बैठ कर ये

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफ़र। ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

0: Prasar Bharati Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi today planted saplings under the Ek Ped Maa Naam campaign at the premises of Akashwani in New Delhi. Talking to Akashwani News, Dr. Murugan appealed to citizens to take a pledge to protect the environment. He emphasized the need to save water, plant trees and protect and conserve them.
1: Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called the nation to Maa Ka Naam Ek Ped Lagane Ke Liye. Importance of the environment, we have to save the water and we have to plant that.
0: U.S. President Donald Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र

0: शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रूपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
5: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
6: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
7: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है।

0: है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ई बो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में हिमाचल सहित पड़ोसी राज्यों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य, विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन भी बड़ी संख्या में इस आयोजन का हिस्सा बने। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है। उन्होंने भावी पीढ़ियों के हित में प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और सौंदर्य के संरक्षण पर विशेष बल दिया। राज्यपाल ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की प्रशंसा की। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिज मैदान पर आयोजित मिनी मैराथन रन फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ चिट्टा फ्री लाइफ के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी को भी

0: बख्शा नहीं जाएगा।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जहाँ 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से बहती है, उनका ख्याल रखना है, उनकी सफाई का ख्याल रखना है, जंगल उगाना है और जागरूक होना है, यही हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संदेश है। क्या की बात मैं आपको करना चाहूंगा, हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है, उसने जो हमारी प्लानिंग है, योजना है, उसको भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है, जो यहाँ ज्यादा चिट्टा वाले है या नशा करने वाले उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
0: पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर खालसा टैक्स के तनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे खालसा टैक्स नाका को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उधर लाहौल स्पीति जिला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तांदी बांध संघर्ष समिति ने कोकसर में प्रस्तावित चिनाब ब्यास लिंक परियोजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। समिति के अध्यक्ष विनोद लारजे ने कहा कि सुरंग निर्माण और ब्लास्टिंग से जल स्रोतों, ग्लेशियरों व स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं उपाध्यक्ष अरुण राणा ने ब्यास नदी में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का हवाला देते हुए सरकार से परियोजना पर पुनर्विचार की मांग की है।
2: नदी का पानी है ये, इसको डाइवर्ट करके ये ब्यास नदी में मिलाने की योजना चल रही है, लेकिन ये जो यहाँ की बिल्कुल जो है हमारी फ्रेजाइल इकोलॉजी है, ये पूरा ये चंद्रा रिवर आगे ये जो चनाब बन के ये आगे पाकिस्तान तक जाती है, लेकिन ये पूरा बेसिन जो है बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजी वाला है। इसके गंभीर पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये परियोजना केंद्र सरकार को इस पर फिर से गंभीरता से विचार करना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा राज्यभर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। बिंदल ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोटों का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। पिछले लंबे समय से अध्यापन के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण से जुड़े चंबा जिला के शिक्षक युद्धवीर टंडन और हिंग राज विचिराग ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। इनके प्रयासों से भगवान नामक एक साझा काव्य संकलन प्रकाशित किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश प्रदेश और जिला चंबा के कई महान कवियों के मन के उद्गार प्रकाशित किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा, जिसका विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
4: विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें प्रकृति तथा पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर मौजूद पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो संपूर्ण प्राकृतिक तंत्र है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु मानव सभ्यता के विकास की आधारशिला हैं। आज जब दुनिया तेजी से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रही है, तब पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई, जैव विविधता का हर और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानवता के सामने गंभीर चुनौतियां बनकर उभरे हैं। इन चुनौतियों से निपटने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक आंदोलन का स्वरूप देने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया और वर्ष 1973 से इसे नियमित रूप से मनाया जाने लगा। तब से ये दिवस विश्व के 150 से अधिक देशों में विभिन्न कार्यक्रमों, जन जागरूकता अभियानों, वृक्षारोपण गतिविधियों, पर्यावरण रैलियों और संगोष्ठियों के माध्यम से मनाया जाता है। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता पर्यावरणीय संतुलन पर निर्भर करती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। नदियां, झीलें और जल स्रोत जीवन के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराते हैं। वन्य जीव और वनस्पतियां पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पर्यावरण असंतुलित तो हो जाए तो इसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। आज दुनिया के अनेक देशों में प्रदूषण के कारण श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोगों की समय से पहले मृत्यु हो रही है। जल प्रदूषण नदियों और जल स्रोतों को दूषित कर रहा है, जिससे पीने योग्य जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। प्लास्टिक कचरा धरती और समुद्र दोनों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं असामान्य वर्षा और बाढ़ आ रही है। हिमालय सहित विश्व के अनेक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में जल संकट और समुद्र स्तर पर बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन गया है। वनों की कटाई भी पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है। विकास परियोजनाओं, सड़क निर्माण, खनन और शहरी विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जंगल नष्ट हो रहे हैं। वन न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं बल्कि वर्षा चक्र को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों के नष्ट होने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है और अनेक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा,
1: 10वीं पास।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: हेलो सहेली में, तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में तो निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे।
0: अच्छा,
1: छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बता

0: ये रेखा जी, आप
1: जी
0: क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउस वाइफ हूँ
0: अच्छा, तो
1: जी।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: भी है।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना।
1: जी, मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ हैं, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम,
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: जी, इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए, आप कौन सा
1: जी।
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
1: कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती
1: जी,
0: हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो
1: वो
0: आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे, मैंने
0: बिल्कुल
1: सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है।

0: मेरी एक पोती है 6 साल की।
1: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी
0: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
1: जी। तो बताइए, आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
0: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह
1: अरे
0: से
1: वाह।
0: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता है, भूले बिश्री संगीत सरिता, भूले बिश्री गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर
0: हाँ,
1: रुचि है
0: और
1: ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन
0: हाँ
1: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
0: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
1: ये अच्छी चीज
0: और
1: है।
0: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं, गमलों में सब में।
1: अरे वाह।
0: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस तरीके से आप, पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
0: हाँ,
1: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
0: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है, तो
1: जी
0: हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलिया, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि
1: जी
0: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं जो आपके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुनूंगी जागो साइड पान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा,
1: गाना सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपने मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताज़ा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस और म्यूजिक, तो ऐसी चीज है।
0: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ,
0: हाँ
1: रत्ना सिन्हा,
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके। जी
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जो
0: बिल्कुल।
1: है,
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है छोटी
0: बहुत बढ़िया।
1: सी।
0: तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से तो
1: थोड़ी
0: बताइए
1: इज्जत।
0: जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते
0: अच्छा
1: हैं
0: अच्छा आपने लगा
1: और
0: रखे हैं?
1: जी हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
0: अरे वाह, बहुत
1: रखते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से लो
1: हाँ
0: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: जी जी
0: और साथ
1: चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: हाँ, होती
0: तो
1: हैं, सब
0: बिल्कुल
1: आती हैं, सब खेलती
0: जी,
1: हैं, तो
0: जब
1: बड़ा
0: वो
1: अच्छा लगता
0: चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: है।
0: तो
1: जी।
0: आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम, घर
0: अच्छा,
1: में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता
1: जी
0: है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाग्वर फिल्म का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियाँ हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी हैं कि छोटी हैं?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की,
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना। जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के
1: हाँ
0: काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है, लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या
1: मुझे
0: चीज़ें
1: आज
0: सिल
1: बहुत
0: लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी है। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है, तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों बेटियों का
1: हाँ
0: बर्थडे।
1: हाँ और मेरी बहन की बेटी के जून 4 ही में है,
0: अच्छा अच्छा
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़ें और आपका नाम
1: हाँ
0: रोशन करें। जी,
1: तो
0: तो आपने बताया कि आप
1: सलवार
0: सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: ब्लाउज सब सिलाई कर देती
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: सारी चीज़ें आप सिल लेती हैं, तो आपको बाहर के
1: हाँ
0: सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा
0: तो ये
1: लगता
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो
1: है।
0: बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा?
1: जियो हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकी अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज़ आएगी तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाज़ा, भावना ने उठकर दरवाज़ा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा कि मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी, बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी, वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश हैं ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है?
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
2: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
2: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत

0: नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बदा आप लोग सूरत मजा माने तुसू लई आयो जो भाई धन्यवाद दोस्त सरस मजारू चित्र बनाई देते हैं। जरा एसपी जना लोको आप भाई के भेट आप मांगे थे।
1: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ भाग 4। भजन संध्या कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:20 पर। युवा दोस्तों के लिए उनका खास कार्यक्रम युव मंच लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आप सुनेंगे देशगान। 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर, विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से विशेष भेंट वार्ता। ₹8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे News@9 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 से लेकर रात्रि 10:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से एंटी चिट्टा कैंपेनिंग के अंतर्गत आयोजित मिनी मैराथन कार्यक्रम पर रेडियो रिपोर्ट।

रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे।
5: कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ भाग 4।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी

0: का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से, और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
0: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था, क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
0: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव

0: बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगी।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से यह कार्य करके यह साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है। और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर।
4: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
5: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
6: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
7: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 5:22 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं करनैल राणा और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या कार्यक्रम आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवमंच।

युवा दोस्तों जय हिंद, कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप, और हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम युवा मंच में। जी युवा दोस्तों, आज है 5 जून सन 2026 और आज का दिन हम सबको पता है पर्यावरण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और हम आपको बता देते हैं कि अब जो है वो करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं रह गया है। ग्रीन इकोनॉमी यानी पर्यावरण से जुड़ा करियर युवाओं के लिए नया और दमदार ऑप्शन बन चुका है। ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर में ग्रीन जॉब्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप भी कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी ग्रीन इकोनॉमी यानी पर्यावरण से जुड़े करियर में अपना करियर बनाकर जो है वो देश के लिए और समाज के लिए सेवा कर सकते हैं। युवा दोस्तों, आज पूरी दुनिया पर्यावरण की चिंता को लेकर गंभीरता से ले रही है और गंभीरता लेना बहुत ज़रूरी है। इसी दिशा में ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। अब ऊर्जा, खेती, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना काम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें युवाओं के लिए ग्रीन जॉब्स यानी पर्यावरण से जुड़ी नौकरियों के अवसर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

तो बिल्कुल युवा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि देखिए, अगर आप भी इसमें करियर बनाना चाहते हैं ग्रीन इकोनॉमी में, तो आज के युवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। यूथ है और बहुत अच्छी उनकी सोच है, और यही वजह है कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की मांग बढ़ती जा रही है। और इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शन हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी ग्रीन जॉब्स का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो भारत 2047 तक लगभग 3.4 करोड़ ग्रीन जॉब्स पैदा कर सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है, और बिल्कुल इसमें आप समाज सेवा भी करेंगे और साथ साथ में आप जॉब भी करेंगे, आमदनी भी कमाएंगे, और भारत में बहुत अच्छे चांसेस जो हैं वो आने वाले समय में दिख रहे हैं इस क्षेत्र में। और इसमें जो है वो अधिकतर नौकरियां ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। भारत की युवा आबादी और विकास की तेज़ रफ्तार इसे इस क्षेत्र में अपना एक नाम बना सकती है, और युवा हैं आप भी इस क्षेत्र में उतरकर अपना करियर बना सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी जो हैं वो समाज सेवा करना चाहते हैं, आपको भी पर्यावरण से प्यार है, संरक्षण आप करना चाहते हैं, और हम सभी को पर्यावरण से प्रेम होना चाहिए। देखिए, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो शायद हमारी भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। हम सबका जीवन संभव है पर्यावरण की वजह से। तो अगर आप जो हैं वो पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन खुले हैं करियर इन ग्रीन इकोनॉमी, और इसमें आप आ सकते हैं और आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का। आप सुनते रहिए यू मंच।

0: नीलम चुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से चुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरत का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: यो मंच प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से आप जो हैं वो पर्यावरण में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल हमने आपको बता दिया कि पूरी दुनिया में जो है वो पर्यावरण को लेकर देखिए चिंता है, गंभीरता से लिया जा रहा है। और हम सबको जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सस्टेनेबिलिटी कोर्स की जॉब की जो डिमांड है वो बढ़ रही है हर जगह पर, और भारत में भी इसका जो है वो अच्छा खासा महत्व देखने को मिल सकता है 2047 तक। और इस पर लगभग 3.5 करोड़ ग्रीन जॉब जो है वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप जो है यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ में समाज सेवा, अपने राष्ट्र सेवा भी आप कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि करियर इन सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इकोनॉमी में जो है वो आप शैक्षणिक वर्ष 2025-26 और 26-27 के लिए जो है वो एडमिशन शुरू हो चुकी है। और छात्र जो हैं वो 4 साल के ग्रेजुएशन या 5 साल के इंटरग्रेटेड प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं। ये उनके लिए शानदार मौका है जो पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं और साथ में अच्छी नौकरी चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इस कोर्स का हिस्सा आप बन सकते हैं। और जब आप ये कोर्स कर देंगे तो उसके उपरांत आपको नौकरियों की भरमार मिलेगी, आप अच्छी खासी इनकम भी कर पाएंगे, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी होगी। और आप युवा हैं तो युवा जो है वो देश के हित में सोचता है, और हमेशा युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, बहुत ही अहम रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी युवा दोस्त ये प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं वो ज़रूर इसका हिस्सा बने, पर्यावरण का हिस्सा बने और पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए सहयोग दें। तो आप भी ये कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये लगभग 4 से 5 साल का ये कोर्स रहता है और इंटरग्रेटेड प्रोग्राम रहता है, और इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो आप जो हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी कोर्स ये रहता है और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सब जगह पे जो है वो अब पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है। और इसकी दिशा में, इसी दिशा में जो है वो हम सबको काम करना पड़ेगा। हम सबका ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। तो युवा दोस्तों, आपके मन में कई बार ये प्रश्न आ सकता है कि भाई ये पर्यावरण हम बात करते रहते हैं तो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आपको बता दूं कि देखिए, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरे भरे जंगल और संतुलित जलवायु हमें प्रकृति से ही मिलती है, यानी इस नेचर से मिलती है, एनवायरमेंट से मिलती है। लेकिन देखिएगा, बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरण के सामने बहुत सारे ऐसे गंभीर चुनौतियाँ, चैलेंजेस लगा दिए हैं। और ऐसे समय में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो आप सबको करना क्या है, आपको पर्यावरण जो है वो बचाना है। और बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से उठती हैं, आप सबको पता है, चाहे वायु प्रदूषण की बात हो, जल प्रदूषण की बात हो, वनों की कटाई हो, जलवायु प्रदूषण हो, तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं इनका समाधान आप युवा कर सकते हैं, आप युवा पीढ़ी कर सकती है। तो आपको आगे आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इनकी सोच, इनकी ऊर्जा और कार्यक्षमता समाज में बदलाव ला सकती है। तो युवा सोच रहे होंगे कि भला वो क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो युवा दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, जल संरक्षण करना है, ऊर्जा की बचत करनी है, साथ में स्वच्छता अभियान में भाग लेना है और पर्यावरण जागरूकता को आपने फैलाना है। देखिए, आप अवेयर होंगे तो आप अपने घर वालों को अवेयर करेंगे, अपने गांव को अवेयर करेंगे, अपने शहर कस्बे मोहल्ले को अवेयर करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना। देखिए, सिर्फ एक दिन के लिए अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि हाँ जी आज तो 5 जून है और पर्यावरण दिवस है, इन्वायरमेंट डे है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर बोल दें या कर दें। आपको हर दिन प्रतिदिन इसके ऊपर जो है वो काम करना होगा, तभी हम सही मायनों में पर्यावरण दिवस मना सकते हैं और सही मायनों में अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। युवा दोस्तों, सोचिएगा, यदि हर युवा वर्ष में केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल भी करे, सिर्फ पौधा ही ना लगाए कि हाँ फॉर्मेलिटी के लिए पौधा लगा दिया और उसके उपरांत फिर आप उसको देखे ही ना, उसमें खाद पानी करे ही ना, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पौधा लगाइए, उसकी देखभाल करिएगा कम से कम 2-3-4 साल तक, फिर देखिएगा हमारे देश में करोड़ों पेड़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, करोड़ों पौधे तैयार हो जाएंगे और इस तरह से जो है वो फिर हम लोगों की जो भागीदारी है वो पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अहम रोल करेगी। तो आपको जो है वो हमेशा करना क्या है, पानी को व्यर्थ मत बहाइएगा। युवा हैं आप और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप पानी का संरक्षण कीजिए। आप अपनी गाड़ी जब धो

0: हैं, अपनी बाइक सब धोते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा करिए कि हफ्ते में, महीने में एक दो बार उसको धुलाइएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, ये सब हमारी मनोस्थिति पर रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जल का संरक्षण करना, क्योंकि अगर जल का संकट हो गया युवा दोस्तों तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पानी बचाना है, पानी को व्यर्थ ना बहने दीजिएगा। उसके बाद बिजली बचाइए, व्यर्थ की आपको जो है वो लाइट नहीं यूज़ करनी है। जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ हम सेव कर सकते हैं, वहाँ सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपके मन में ये भाव तो कभी नहीं आना चाहिए कि मुझसे क्या होगा, मेरे एक बल्ब जलने से क्या हो जाएगा, या मेरे एक लैपटॉप के चले रहने से क्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सबके सहयोग से हम जो हैं वो पर्यावरण को अच्छा बनाएंगे, अपने देश को, अपने राष्ट्र को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सिर्फ ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करती हैं, इसीलिए कोशिश करिएगा अपनी तरफ से सबका सहयोग होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि हम लोग देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो हैं वो सैनिक नहीं बन पाए, फौजी नहीं बन पाए, तो ये भी आपके लिए देश सेवा है युवा दोस्तों। आपके माध्यम से बहुत अच्छी ये सेवा हो सकती है, अगर आप ऊर्जा बचाएंगे, पानी बचाएंगे, और सबसे ज़रूरी बात, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करिएगा। जी हाँ, जहाँ तक हो सके आपको जो है वो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हम लोगों को पूरे परिवार सहित जाना है, तो आप अपना वाहन चला सकते हैं, अपना व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अननेसेसरी ज़रूरतें हैं वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आप युवा हैं, लेकिन युवा ही इस देश का भविष्य है, युवा ही जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। यू मंच प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक संगीत में विराम का।
1: भटकते देखे हैं लाखों मुल्ला, करोड़ों पंडित

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम यू मंच। यू मंच में हम बात कर रहे थे दोस्तों कि हम युवाओं की, आप युवाओं की क्या भूमिका रहती है पर्यावरण को बचाने में। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपको बहुत छोटे छोटे कार्य करने हैं और वो छोटे छोटे काम ही आपका नाम जो है वो रोशन करेंगे समाज में, देश हित में। और बिल्कुल इसके साथ साथ आप कोशिश करिएगा कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले, रसोई बागवानी को प्रोत्साहन मिले, और साथ में युवा जो हैं वो कागज़ का कम उपयोग करें, डिजिटल माध्यम अपनाइएगा। कागज़ का जितना कम उपयोग होगा वो भी पर्यावरण को सेव करने में बहुत ही अच्छी मदद होगी हमारी, हम सबकी। इसलिए कागज़ का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ नदियों, तालाबों और जल स्रोतों की सफाई में भाग लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम हिमाचल में रहते हैं और हिमाचल में बहुत सारे ऐसे जल स्रोत हैं जिनकी साफ़ सफाई हमारे जो पूर्वज होते थे, हमारे जो आप कह लीजिए फोरफादर्स होते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे। और ऐसा नहीं है कि युवा नहीं करते हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से और भी जगहों से देखते रहते हैं कि हमारे युवा जो हैं वो भी उन स्रोतों का, उन जल स्रोतों का जो है वो संरक्षण कर रहे हैं और साथ साथ में उनकी सफाई भी समय समय पर करते रहते हैं। तो आपको भी इसका जो है वो हिस्सा बनना है और साथ में आप जो है वो वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए भी लोगों को प्रेरित करिएगा उनको बचाने के लिए। और युवा दोस्तों, स्थानीय स्तर पर आप जो हैं वो सफाई और हरित अभियान चला सकते हैं। अपने लेवल पे कार्य शुरू करिए जहाँ से आप कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि हमें दिल्ली जाना है, हमें मुंबई जाना है इस कार्य के लिए। आप अपने गांव से, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने शहर से शुरुआत करिएगा, फिर देखिए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। बस अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। और इसके साथ साथ जो ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है, उसका भी सही निपटारण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये सब कुछ करना है और सबसे ज़रूरी बात है अवेयरनेस। जितनी हो सके अपने लेवल पे आपको जो है वो अवेयरनेस करनी है, जागरूकता फैलानी है। देखिए, जब तक लोग जागरूक नहीं बनेंगे, सर्वप्रथम तो खुद जागरूक बनिए। आप युवा हैं, आपका जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जागरूक हो गए तो समझिएगा समाज खुद ब खुद जागरूक हो जाएगा। तो आप सबकी कोशिश होनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए, और आप जो हैं वो आगे आएंगे हम उम्मीद करते हैं, और ज़रूर हमारा देश जो है वो बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण में सबसे नंबर वन पे आएगा पूरे विश्व में। फिलहाल कार्यक्रम का समय यही पर हो रहा है पूरा। दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अनूप को। नमस्कार। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: रविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर, स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है और विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज ही उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सका।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह भी किया।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। साफ पानी, शुद्ध हवा, हमारे जंगल और नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कुदरत के इन अनमोल उपहारों को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मिशन सिर्फ एक दिन तक ही न सीमित रहे, बल्कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पानी बचाए और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्रकृति की रक्षा यानी हमारी स्वयं की सुरक्षा है।
0: इस बीच मुख्यमंत्री ने ओक ओवर शिमला में चिनार वृक्षारोपण अभियान के पहले चरण का शुभारंभ भी किया। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा को मिले भारी जनसमर्थन से कांग्रेस की राजनीतिक विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से अब छुटकारा चाहती है और आने वाले समय में ये जन आक्रोश और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय जनता के फैसले को ही छोटा साबित करने की कोशिश कर रही है। चंबा जिला में जनगणना 2026 के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लगभग 1400 अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चंबा के उपायुक्त व जिला जनगणना अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जिले के सभी नागरिकों से जनगणना के दौरान सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।
3: जिला चंबा में दो भागों के अंदर जनगणना हमारी होगी। जो फर्स्ट फेज है सितंबर के अंदर, वहाँ पे जो हमारे सर्द इलाके हैं जिसमें लगभग 1050 रेवेन्यू विलेजेस आते हैं वो कवर किए जाएंगे, और जो हमारे बाकी विलेजेस हैं दे विल बी कवर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी अलोंग विद रेस्ट ऑफ द स्टेट। मेरा निवेदन रहेगा जिला चंबा के सभी वासियों से कि आप हमारी पूरी टीम का इसमें सहयोग करें, सही जानकारी अपने एन्यूमरेटर को दें। तो अगर हम सही से इन्फॉर्मेशन देंगे, सही जानकारी भरेंगे, तो बेटर प्लानिंग हमारा देश कर पाएगा।
0: राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल, समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सफर सुहाने, गाने पुराने।

सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। दोस्तों, नए और पुराने गीतों का ये संगम रहता है और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको सुनवाते हैं कुछ नए कुछ पुराने गीत। के बारिश की बूंदों में तेरा नाम लिख दूं, हर भीगी हवा में तेरा पैगाम लिख दूं, ये मौसम भी तुझसे मिलने को बेचैन है, मैं चाहूं तो बादलों पे तेरा सलाम लिख दूं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। तेरे ख्यालों में बीत जाते हैं दिन मेरे, तेरे ख्यालों में बीत जाते हैं दिन मेरे, तेरे बिना हर लम्हा अधूरा सा लगता है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ही हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। दोस्ती वो नहीं जो जान ले ले, दोस्ती वो है जो हर दर्द सहले, साथ हो चाहे दूरियां कितनी भी, दिल से दिल का रिश्ता कह ले।

सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त अनूप के साथ। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना नया, कभी हंसी कभी गम कभी मौसम का साया, जो पढ़ ले इसे सच्चे दिल से वही हर लम्हा जी पाया।

श्रोतो, इसी के साथ आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: अपने जीवन च जे अस है दालें जो उपलब्ध रखना चाहते हैं या फिर प्रोटीन या फिर और चीज़ा जो जे अस ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं तो है दालें कने तिना ते बनने वाले उत्पाद व्यंजन आम तौर पर जे अस हजे रोज़ भोजन का एक प्रमुख अंग आया तो जो शामिल कर सकते हैं
1: कने दालें विच प्रोटीन की मात्रा कने अन्य फसल तियां दे गेहूं जौ आदि की तुलना में सर्वाधिक प्राप्त होंदियां भी हैं। प्रति व्यक्ति मात्रा की दृष्टि ने यदि देखा जाए तो दालों की उपलब्धता की गल करिए मनुष्य की बढ़ती आबादी में दालों की घटती पैदावार कने तिना की खेती की उपेक्षा में 15-20 ग्राम प्रति व्यक्ति रही होती भी 80 ग्राम प्रति व्यक्ति विच दे असे अधिक उंदी थी।
0: इस ते जे असे हां अनुमान लगाई सकदे कि आज दे साधारण व्यक्ति विशेषकर सजे शाकाहारी भारतीय अन्न तिना दे भोजन च प्रोटीन दे जीवन च एक मूल तत्व जैसे बनी गए या कने काफी भारी कमी जैसे प्रोटीन दी जैसे आदि है दिखा अहां इस ते अंदाजा लगाई सकदे हैं क्योंकि अहां जे असे दालें दा उत्पादन करना भी जे असे घट करी ते अहां दे खेतां च जे असे जितने ज्यादा दालें दी या फिर ये जे अहां दियां दलहनी फसलां होंदियां हियां तिना दी बिजाई करदे हे तो अहां दे घरां च जे असे घरां दी ही दालें दा इस्तेमाल जे असे होंदा हा। पर हुण के टाइम दी अगर अहां गल करिए तो कुछ टाइमां ते जे असे अहां दालें दी फसलां दी बिजाई करना जैसे काफ़ी हद तक जैसे कटाई दी तू यही या तो फिर कई बार जे असे अहां बंद ही नहीं है खासकर ये जे मां दी दाल होएगी या फिर अहां दी ये जे मूंगी दाल होएगी रोंगी तो अज भी जिन्ना खरीफ के मौसम विच जे असे लगभग अहां दे किसान भाई या बागवान भाई भैन जैसे बांधते हैं पर मूंग की दाल कने मां की दाल जैसे काफ़ी हद तक अहां तुहां किसान जैसे बाणा कटाई दी तो इसका फर्क जे असे अहां दे दिनचर्या जे असे पवा दा ही है। अहां दी जे बढ़ती आबादी दे अनुसार जे असे अहां दिखा दे हैं तो कुपोषण च होने वाले ये जे बिगड़ते स्वास्थ्य पर जे असे तिथि दे अहां अनुमान लगाई सकते हैं कि दालें दा जे असे प्रचलन घट होई गए है कने अहां जे असे कुपोषण दे शिकार जे असे दिन प्रतिदिन होंदे जा रहे हैं।
1: कने दालें ने कई उत्पाद दे से बनदे भी है व्यंजन दे से बनाए जाते हैं कने तिन्हां दी गुणवत्ता दे अनुसार विपणन दे से कीते जांदा भी है।
0: जी बिल्कुल ठीक ला दे हैं दिखा भई ताली जे अहां दियां ये जे कणकां दा काम खत्म हुंदा हा तां अहां दियां ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਜਤਾਈ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੀਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤਿਸ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੜੀਆਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤਿਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸੇਪੂ ਬੜੀ ਜੇ ਇਸ ਤਿੱਥੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਬਦਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਕਨੇ ਅਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੀ ਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਅਲਵਾ ਪੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲੀ ਸੋਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਣੇ ਦਾ ਬੇਸਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੰਨੂਏ ਚਣੇ ਬੰਦ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਣੇ ਅਹਾਂ ਰੱਖੀ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਅਰਹਰ ਦਾਲੀ ਸੋਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਬਰ ਬੜੇ ਭੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਟਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਬੇ ਬੰਦ ਮਟਰ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਮਟਰ ਦੀ ਆਦਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਾਂ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਾਂ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੇ ਥੇ।
1: ਬੇਰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲੀਂ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀਆਂ ਕਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਅਨਾਜਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਦਾਲੀਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਨੇ ਇਹ ਦਾਲੀਂ ਦੇ ਆਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਨੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਚਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਰੌਂਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਕਿਨੇ ਤੀਆਂ ਚਣੇ ਦੀ
0: ਅਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੱਕਵ ਥੇ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਜੇ ਇਸ ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਨੇ ਅਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਥਾ ਕਿ ਅਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਹਨ ਅਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਏਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਦਾਲੀ 'ਤੇ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਹੋਏਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅਹਾਂ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਅਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਇਸ ਔਗੀ ਦਾਲੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ ਇਸਦਾ प्रभाव जैसे आंदी है मिट्टी दे संरक्षण च बीज जैसे पौंदा ही है क्योंकि अहां दाली ते जे असे दाली च अगर अपने खेतों च बीज दे तो तिस्ते जे असे आंदी है मिट्टी च नाइट्रोजन की हजे एक कमी होंगी ही तो हाँ जो ये पूरा कर दी है कने कई तरह के हजे कीट या फिर कई तरह के रोग आदि फसलों जो लगते है तो सह इन्हों फसल चक्कर अपनाई करने जे असे काफ़ी हद तक आंदियां फसलां जो ये प्रभावित करते थे कने इस ते जे असें दलहनी फसलां अगर हाँ लगाते हैं तो आंदियां मिट्टी का उपजाऊपन भी बरकरार रहता था
1: कने दलहनी फसलां लगाने दे असें आंदी जमीन भी अधिक गहराई तक नहीं पहुँचती क्षमता होने के कारण भूमिगत पानी के रिसाव के उपयोगी रहते भी है कने इस दे कारण ही पानी के स्रोतों में भी सूखने का भय दे असर घट रहा भी है
0: जी
1: कने इस दे पौधे कने पत्तियां च फैलाव कने भूमि धरातल च भी छाया प्रदान दी से उंदी भी कने भूमिया विच अधिक देर या ज्यादा देर तक नमी दे से बनाव ही रहते भी कने पानी संरक्षण या अपरोक्ष दे रूप च सहायक दे असर रहते भी है कने गुण कने भूमि कटाक जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप च रोकने ताएं दे असर सक्षम मिट्टी संरक्षण भी सहायक हुंदी भी।
0: दिखा दलहनी फसलों की जड़ा जैन सह लंबी होने दे या फिर पौधे के फैलाव के कारण जैसे अनुवंशिक गुणों के कारण इसकी खेती जैसे हाँ घट पानी के आवश्यकता अनुसार करी सकते हैं क्योंकि हाँ जे बरानी क्षेत्र होंगे है खुश्क क्षेत्र होंगे है तीन चीजें ऐसे दलहनी फसलों की खेती जैसे सफलतापूर्वक की जाती है कने अज भी कई जड़े हाँ क्षेत्र हैं तिना बच्चे जे ऐसे दलहनी फसलों की खेती की जाती है कने हाँ किसान जे ऐसे दालें का फायदा भी इन्होंने खेतों से लेंदे हैं। इसके अलावा जे ऐसे दलहनी फसलों के वंशज संबंध रखने वाले पौधे प्रजातियां या जड़ा मुलायम गठी जैसे होंगे ही तिना बच्चे रहाइब जोबियम जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक विशेष वंशज बसर जैसे करता हा। इस जीवाणु वंशज के जे अस आवा बिच मिली करने पौधे के मुख्य तत्व तिना मैं बोले ना नाइट्रोजन की कमी जो जे ऐसा ये पूरा करते थे
1: कने इस बिच रसायनिक खादियां तीन यूरिया कने मिश्रित खादियां इफको 12-32-16 आदि दे ऐसे तत्व जो घट मात्रा में उपलब्ध कराने ताई आवश्यकता पौंदी भी कने फलस्वरूप रसायनिक खादियां की आवश्यकता घट करने ताई दे ऐसे इन्हां द्वारा कई कई बुरे प्रभाव दे असर कमी लाने ताएं दे असर रहिंदे दालां दी फसलां लेने ताएं दे असर हां जो अन्य फसलां दा फसल चक्र भी अपनाई सकदे वी ए। कई बारी छोटे किसान दे होंदे ते इन्हां जो आर्थिक स्थिति सुधारने ताएं बल्कि जैविक खेती कने पर्यावरण सुरक्षा ताएं लाभप्रद भी हुंदे भी हन
0: जी। यानी कि अहां बोली सकदे कि अजे अहां दी प्राकृतिक उपजाऊपन ना ते जो बनाए रखने ताएं जे असर दलहनी फसलां दा काफी हद तक महत्वपूर्ण योगदान जैसे हां दी मिट्टी वास्ते रहे आ। दलहनी फसलों जन तिना बिच ढेंचा गवार लुरसन बरसीम सनई यानी कि सैन हैम्प आदि एड़ी भूमि जो उपजाऊपन या इसकी उर्वरकता जो बनाए रखने ताई हरी खादा के रूप से इस्तेमाल जैसे किया जाता हा। इन्हों के प्रयोग से जे असर रसायनिक खादा च कमी आती है कने अधिक गुणवत्ता वाली पैदावार जे इसे अहां ले सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करवाना भी ये संभव हुंदा ही है। इस प्रकार जे असें अहां दी ऊर्जा संकट खाद्यां दे मुल्य च वृद्धि ये अतिरिक्त फिर गोबर या कंपोस्ट जिहड़ी कार्बनिक स्रोत हैं कैंचुआ खाद दी इन्हां जो सीमित होने की वजह से जे असें हरी खादा का महत्व और भी जैसे बढ़ी गए है
1: भी किसान के असर दालों की आपूर्ति कने आर्थिक दलहन फसलों जो अपनाने के विशेष गुणों चीज़ के प्रोटीन च प्रचुर मात्रा कने विभिन्न उत्पादों में व्यंजन के रूप में विधिवत्ता लाने ताएं विपणन पोषकीय पशु पक्षी भोजन कने भूमि कने पानी संरक्षण में भूमि उपजाऊपन शक्ति बढ़ाने ताएं सुधर के फसल चक्र जो अपनाई सकते जैविक खेती कने पर्यावरण सुरक्षा कने पैदावार विच गुणवत्ता वाली बढ़ोतरी ताई भी अपने दो दो खेतरां विच दे क्षेत्र विच पद्धतियां दे अनुसार दलहनी फसलां दी खेती करने दे अस इक अनिवार्य दे अस समझा जांदा भी आ।
0: यानी कि गलाने दा मतलब ए ही है कि आहां तुहां किसानां जो कोशिश ए करनी चाहिंदी कि आहां जे ज्यादा ते ज्यादा नहीं तो कम से कम दो या तीन खेत एड़े लगान तिना बिच जे असें आहां दलहनी फसलां जरूर लगान। अगर आहां दलहनी फसलां लगांगे तो आहां आने वाले दिनां च जे असें कई तरह दे हजे कीट पतंगे होंदे हांदी फसलां जो नुकसान करदे है तिना ते भी बचाव होना ही है। सोगी आहांदी प्राकृति तिहा जो भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना ही है। आहांदी मिट्टी का भी उपजाऊपन बरकरार रहना ही है। तो इस ताई जरूरी यही है कि हाँ ज्यादा ते ज्यादा दलहनी फसलों की तरफ जे असें अपना रुझान देन।
1: लै भी गल्ला बातें तो रमा करी लई कने हुण सुन लेना एक मनोरंजन ताई लोकगीत।

0: ਸ਼੍ਰੋਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥੋਕ ਭਾਵ ਦੀ। ਆਲੂ ਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 8-13 ਰੁਪਏ, ਪਹਾੜੀ ਆਲੂ ਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 14-16 ਰੁਪਏ, ਪਿਆਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 20-22 ਰੁਪਏ, ਗੋਭੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ 50 ਰੁਪਏ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 16-20 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ 45-50 ਰੁਪਏ, ਘੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 20-22 ਰੁਪਏ, ਭਿੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ 22-25 ਰੁਪਏ, ਕਰੇਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 25-30 ਰੁਪਏ, ਪਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 40-45 ਰੁਪਏ, ਧਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 80-100 ਰੁਪਏ, ਟਮਾਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 15-16 ਰੁਪਏ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ 40-45 ਰੁਪਏ, ਨਿੰਬੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 70-80 ਰੁਪਏ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 165-170 ਰੁਪਏ, ਅਨਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 190-220 ਰੁਪਏ, ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ 110 ਰੁਪਏ, ਪਪੀਤਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 50 ਰੁਪਏ, ਕੀਵੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿੱਬਾ 1700-1800 ਰੁਪਏ, ਅਮਰੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ 125-130 ਰੁਪਏ, ਖਰਬੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ 25-35 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥੋਕ ਭਾਵ ਦੀ। ਇਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੰਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੰਪੰਨ। ਦਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰਾਮ ਰਾਮ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफ एम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
3: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
3: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
2: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7-8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान

0: ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM MHz पर।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफ एम बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण।

अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का

0: संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार। भाजपा का आरोप, पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को जल्द मिलेंगी एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें, खरीद प्रक्रिया पूरी। और केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर, स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है और विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज ही उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सकता।
0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह भी किया।
2: हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है, उसने जो हमारी प्लानिंग है, योजना को भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है। जो ज्यादा चिट्टा वाले हैं या नशा करने वाले, उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने ओक ओवर शिमला में चेनार वृक्षारोपण अभियान के पहले चरण का शुभारंभ भी किया। राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल, समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को भी शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहयोग राज्य को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि ये समझौता हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य और हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के एक आदर्श के रूप में विकसित करने की प्रदेश सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के असंगठित अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से सफाई मित्र योजना का भी शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, जबकि लाहौल स्पीति और भरमौर क्षेत्रों में दो दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस सरकार के मंत्री बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति अब खुलकर सामने आ रही है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि चुनावों में लगातार हार और जनता के बीच घटते जनाधार के कारण कांग्रेस नेता धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विवादित बयान देकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
3: प्रदेश में हालिया संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, वहां कांग्रेस पार्टी को, जिनकी प्रदेश में सरकार है, करारी हार का सामना करना। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, इनके मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन हमारी संस्कृति, हम इसको मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उनकी ये तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है।
0: इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा को मिले भारी जनसमर्थन से कांग्रेस की राजनीतिक विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से अब छुटकारा चाहती है और आने वाले समय में ये जन आक्रोश और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में युवा चेहरे जीत कर आए हैं। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। विक्रमादित्य सिंह ने इन चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा के दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, ऐसे में भाजपा का जीत का दावा करना उचित नहीं है।
4: अभी जो हाल ही में हमारे पंचायती राज के चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसमें बहुत से हमारे युवा चेहरे जो है इस बारी जीत कर आए हैं, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है और जिला परिषद में है या पीडीसी में है, और इसमें नई सोच निकल कर आती है। ऐसे चेहरे जो हम आम रूप से नहीं देखते हैं, मगर वो इन चुनावों के माध्यम से हमको मिले हैं, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि बहुत से यंग प्रोफेशनल जो है इसमें जीत कर आए हैं। हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों का, जितने भी चुनाव में जीत कर आए हैं, उनका पूरा समर्थन करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे।
0: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के मौके पर 23 जून को रिज मैदान पर प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत सहित 6 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन 2 का आयोजन हरियाणा विधानसभा द्वारा 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ विधानमंडल में किया जाएगा। सम्मेलन में 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक, समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 जून को 12

0: वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा राज्य भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। बिंदल ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार। भाजपा का आरोप, पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को जल्द मिलेंगी एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें, खरीद प्रक्रिया पूरी। और केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
6: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
7: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम।
8: यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
0: नमस्कार श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो हम इस दौरान सरकार की क्या उपलब्धियां रही और क्या कार्यक्रम रहे जिनसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, आज हम इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया ठाकुर जी। आप अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास विभाग व प्रदेश नोडल अधिकारी PM आवास योजना हिमाचल प्रदेश हैं। सोनिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
9: नमस्कार, स्टूडियो में आज मुझे बुलाने के लिए आपका भी धन्यवाद।

0: जी सोनिया जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं, जिनके क्रियान्वयन से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो उनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको आपका विभाग संचालित कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालेंगी।
1: जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 से हुई, लेकिन इसमें जो व्यय है उसका अनुपात 90 और 10 के अनुपात में केंद्र सरकार, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करती है।
0: जी
1: तो जितना भी फंड इस योजना के लिए दिया जाता है उसका 90% केंद्र सरकार से मिलता है और उसका 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार व्यय करती है।
0: जी
1: इसके अतिरिक्त इस योजना में एक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है,
0: जी
1: लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 20,000 अतिरिक्त धन जो है उसे हम टॉपअप कहते हैं,
0: जी
1: वो भी स्कीम में लाभार्थी को दिया जाता है।
0: केंद्र
1: तो
0: के अलावा
1: जी,
0: हिमाचल
1: केंद्र के
0: सरकार
1: अलावा
0: में।
1: जी,
0: जी।
1: और इस प्रकार से हम लगभग 1,50,000 रुपये एक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दे पाते हैं।
0: जी, हिमाचल में अभी तक इस योजना के तहत कितना काम हुआ है, कितने लोगों को फायदा मिला है और ये योजना कितनी सफल रही है?
1: हिमाचल में ये योजना काफी सफल रही है।
0: जी
1: लगभग 1,03,000 के करीब हमारे पास लाभार्थी इस योजना में आए थे,
0: जी जी
1: जिनमें से लगभग 67,000 लाभार्थी ऐसे हैं
0: जी
1: जिनको कि अपना मकान इस योजना में मिल चुका है,
0: जी
1: और 33,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके मकान बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है,
0: जी
1: निर्माणाधीन है उनके मकान। तो
0: जी जी
1: लगभग 1,03,000 लोग जो है वो प्रथम चरण में इसमें लिए गए हैं,
0: जी
1: और अभी एक सर्वे चल रहा है जिसमें इस योजना का जो दूसरा चरण है
0: जी
1: उसके लिए लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है, और इसमें हमें अभी सर्वे में लगभग 2,23,000 लोग सर्वे में हमारे पास आए हैं,
0: जी जी
1: और इस सर्वे का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, इसका डिलीशन प्रोसेस आजकल चल रहा है,
0: जी
1: और उसके बाद जो सर्वे कंप्लीट होने के बाद एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनेगी
0: जी
1: जिसमें जो भी एलिजिबल पात्र जो लाभार्थी होंगे
0: जी
1: वो उसमें लिए जाएंगे, क्योंकि इस योजना में लाभ लेने के लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं।
0: जी
1: जो लोग हैं उनके पास अपना मकान नहीं है, जो बेघर लोग हैं या
0: जी
1: जिनके पास कच्चा मकान है वो लोग इस योजना में इसका लाभ लेकर अपने मकान को बनाने के लिए आर्थिक सहायता ले सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे कि उनकी मासिक आय जो है वो
0: जी
1: 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी
0: जी
1: चाहिए, और इसके अतिरिक्त कुछ और इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, अगर वो उसमें फॉल नहीं करते हैं तो
0: जी
1: वो पात्र माने जाएंगे इस योजना में लाभ लेने के लिए।
0: जी जी
1: तो जो लोग पात्र हैं उनकी एक लिस्ट इस प्रकार से सर्वे के बाद फाइनल की जाती है, और
0: जी
1: उसके बाद उन्हें 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये धनराशि दी जाती है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 65,000 रुपये की,
0: जी
1: जब मकान सेंक्शन होता है किसी
0: शुरुआती
1: लाभार्थी के नाम,
0: शुरुआती तौर
1: जी
0: पर। जी
1: शुरुआत में 65,000 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाता है,
0: जी
1: और उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट 52,000 रुपये का दिया जाता है
0: जी
1: जो लिंटल लेवल तक जब मकान का निर्माण हो जाता है तब दिया जाता है,
0: जी
1: और तीसरा जो है वो कंप्लीशन पर 33,000 रुपये की राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
0: जी डॉक्टर सोनिया जी, ये योजना इतने बड़े स्तर पे हिमाचल में चल रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस योजना की जानकारी कैसे पहुंचाई जाती है? कहाँ से पता लगता है उन्हें कि हम इस योजना में शामिल हो सकते हैं?
1: हम इसके लिए आईसी एक्टिविटीज के तहत योजना का प्रचार करते हैं,
0: जी
1: योजना के जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन पैरामीटर्स हैं
0: जी
1: उनकी एक वाइड पब्लिसिटी की जाती है, ताकि लोगों को ये पता रहे कि इस प्रकार की एक योजना है जिसका लाभ लेकर वो
0: जी
1: अपना घर बना सकते हैं, और किस प्रकार से वो एलिजिबल हो सकते हैं, वो ये जान सकते हैं कि क्या वे पात्र हैं
0: जी
1: इस योजना का लाभ लेने के लिए या पात्र नहीं हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके लिए हम विभिन्न मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, रेडियो जिंगल्स के माध्यम से
0: जी
1: या समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, जब हमारा सर्वे चल रहा है, जब हम लाभार्थी की पहचान के लिए सर्वे कर रहे हैं,
0: जी
1: उस समय हम इन सारी गतिविधियों पर जोर देते हैं
0: जी
1: ताकि सब लोगों तक ये सूचना पहुंच पाए, और जो पात्र लोग हैं
0: जी
1: जो सही में इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर का एक सपना पूरा कर सकते हैं उन
0: जी
1: तक ये जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा ब्लॉक्स में हमारा स्टाफ है,
0: जी
1: ब्लॉक स्तर पर भी इसकी वाइड पब्लिसिटी की जाती है,
0: जी
1: हमारे पंचायत सेक्रेटरीज हैं, रोजगार सेवक हैं, वो इस योजना के बारे में घर घर तक जानकारी पहुंचाते हैं।
0: जी
1: और इस बार जो हम सर्वे कर रहे हैं उसमें बल्कि एक खास एलिमेंट ये था उस सर्वे का कि सेल्फ सर्वे भी लोग कर सकते थे, वो अपने मोबाइल ऐप पे,
0: जी
1: मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करके
0: जी
1: सेल्फ सर्वे भी कर सकते थे, और असिस्टेड सर्वे जो है वो ब्लॉक के अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। तो
0: जी
1: बहुत सारे

0: उन्हें इसमें 26,745 लोगों ने
1: जी
0: सेल्फ सर्वे करके अपने आप को रजिस्टर करवाया है,
1: जी
0: और उसके अलावा 1,96,000 के करीब लोग हैं जिनका असिस्टेड सर्वे हुआ है।
1: जी
0: तो इस प्रकार से जब सर्वे का काम चल रहा था, तो
1: जी
0: हम बड़े स्तर पर इसकी पब्लिसिटी, वाइड पब्लिसिटी करते हैं, ताकि हम हर लाभार्थी तक इस योजना को और इसके जो लाभ हैं उनको पहुंचा सकें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लाभार्थी इसमें कवर कर लिए जाएं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी लाभार्थी जो एलिजिबल है, पात्र व्यक्ति है, जिसको घर की आवश्यकता है, उस तक इस योजना का लाभ पहुंचे।
1: जी हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कैसे ऐसी चुनौतियों से निपटा जाता है?
0: क्योंकि हमारा राज्य जो है वो एक हिल स्टेट है, तो यहाँ अलग किस्म की चुनौतियाँ हैं।
1: जी
0: एक तो यहाँ पर घर बनाने की लागत जो है मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा है,
1: ज्यादा जी
0: इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको जो आर्थिक सहायता राशि है
1: जी
0: वो थोड़ी सी ज्यादा है मैदानी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको जो लाभ मिल रहा है उसके कंपैरिजन में।
1: जी
0: लेकिन जैसे निचले क्षेत्रों में 1,20,000 है ये राशि, और
1: जी
0: यहाँ पे सिर्फ 1,30,000 है, तो सिर्फ 10,000 का फर्क है।
1: फर्क है
0: तो
1: जी
0: हम इसको समय समय पर भारत सरकार से उठाते रहते हैं कि क्योंकि हिल स्टेट्स जहां पर हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज्यादा
1: ज्यादा
0: है,
1: आती है जी
0: मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है लोगों को, तो थोड़ा धनराशि जो है वो कम से कम 2 लाख होनी
1: होनी
0: चाहिए।
1: चाहिए जी
0: और इसीलिए प्रदेश सरकार ने भी इसमें 20,000 रुपये का टॉपअप ऐड किया है, ताकि थोड़ा सा आर्थिक सहायता लोगों को और मिल सके।
1: जी
0: तो भौगोलिक स्थिति प्रदेश की ऐसी है कि कुछ इलाके दुर्गम हैं,
1: जी
0: या परिवहन के साधन जो है उनके माध्यम से वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पहुंचाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या उसका खर्च जो है वो
1: ज्यादा
0: ज्यादा आ
1: लगता
0: जाता है,
1: है
0: तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है।
1: जी
0: तो इस तरह की हिल स्टेट्स की अपनी चुनौतियां हैं, जिनको लेकर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि इनका समाधान हो सके।
1: जी जी डॉक्टर सोनिया जी, जैसे आपने कहा कि इस योजना के तहत पक्के मकान बने लोगों के लिए और उनका सपना एक साकार हुआ, कच्चे मकानों में रहते थे, छतें टपकती थी, तो ऐसे लाभार्थी आपके ध्यान में होंगे कुछ जिनके अनुभव आप साझा करना चाहेंगी?
0: जी, अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे पिछले 2023 में हिमाचल में, जैसा आप जानते हैं कि डिजास्टर एक बड़े लेवल पर हुआ,
1: जी
0: और बहुत सारे लोगों के घर जो है उसमें ध्वस्त हो गए थे,
1: जी
0: टूट गए थे, और उन लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी।
1: जी
0: तो 10,000 लोगों को अभी हमने 2025 का जो डिजास्टर आया है,
1: जी
0: डिजास्टर अफेक्टेड घर हमारे 10,000 के करीब हैं जिनको हमने इमिडिएटली रजिस्टर किया है बिना
1: जी
0: सर्वे के, जबकि हमारा सर्वे का काम चल रहा है।
1: जी
0: लेकिन ये जो लोग हैं इनको हमने सर्वे से अलग 10,000 लोगों को एकदम से रजिस्टर किया है इस योजना में,
1: जी
0: और उनको हम अभी सीधे सीधे इंस्टॉलमेंट्स रिलीज करने जा रहे हैं।
1: जी
0: और ऐसे बहुत सारे केसेस हमें इस दौरान देखने को मिले 2023 के डिजास्टर में, 25 के डिजास्टर में,
1: जी
0: जहां लोग अपना पैतृक घर था जो उसे खो चुके थे और बेघर थे, और उनको त्वरित तौर पे इस
1: सहायता
0: योजना के माध्यम से सहायता मिली है, जिससे
1: जी
0: कि घर का निर्माण जल्दी से जल्दी हमने करवाने की कोशिश की है।
1: जी
0: क्योंकि जो रूटीन में हमारे पास केसेस आते हैं उनमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, जबकि हमने 1 साल से कम करके हर घर की कंस्ट्रक्शन में 8 या 9 महीने तक कंप्लीट कर देंगे टारगेट लिया है, लेकिन
1: जी
0: ऐसे घरों को हमने 3 महीने में भी पूरा करवाया है। तो ऐसे एक सुखमा देवी है पुजारली पंचायत में, जिनका पैतृक मकान जो है वो पूरी तरह से टूट गया था डिजास्टर में,
1: जी जी
0: और इस योजना की आर्थिक सहायता से वो अपने घर को ठीक करवा पाई हैं
1: जी
0: और उस घर को पुनर्निर्माण कर पाई हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारा डाटा हमने कलेक्ट किया है, जिसमें हमने डिजास्टर के दौरान उस घर की क्या स्थिति थी
1: और
0: और
1: बाद
0: फिर
1: की
0: बाद की क्या स्थिति थी, उस तरह के फोटोग्राफ्स भी हमने कलेक्ट किए हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर आप उन फोटोग्राफ्स को देखें तो आप जान पाएंगे कि डिजास्टर से उन घरों को कितना नुकसान पहुंचा था। कुछ
1: जी
0: घर तो पूरी तरह से टूट गए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और कुछ घर पार्शली डैमेज हुए थे।
1: जी जी
0: तो दोनों तरह के लोगों को इसमें कवर करके हमने जल्दी से जल्दी उनके घरों का निर्माण करवाया है।
1: जी
0: और अभी बल्कि एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर किसी ने हमीरपुर के क्षेत्र के किसी महिला के घर का फोटोग्राफ डाला था कि
1: जी
0: डिजास्टर में लास्ट ईयर वो अफेक्ट हो गया था उनका घर।
1: जी जी
0: तो हमने इमीडिएटली चेक किया हमारे डेटाबेस में, हमने उनको सर्वे में लिया है, और
1: जी
0: हमने उनको श्योर किया है कि हम आपको विदिन अ वीक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज कर देंगे।
1: जी
0: तो इस तरह से बहुत बेनिफिशियरीज हैं, खास करके डिजास्टर अफेक्टेड बेनिफिशियरीज, जिन तक हमने जल्दी से जल्दी पहुंचकर उनको धनराशि और मामलों के बजाय जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने की
1: करवाई है
0: कोशिश की है।
1: जी। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए किस तरह से वरदान बन रही है, ये आपके उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए, जैसे आपने बताया, धनराशि उपलब्ध करवाता है। तो तकनीक और डिजिटल

0: माध्यमों ने योजना के क्रियान्वयन व निगरानी को जो है वो कितना सुलभ बनाया है?
1: देखिए, जब से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें यूज करने लगे हैं, मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है,
0: जी
1: पारदर्शिता जो है वो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बढ़ गई है,
0: जी
1: और ये एक चीज सुनिश्चित हो गई है कि जो बेनिफिट है वो सीधे लाभार्थी तक
0: पहुंच रहा है जी
1: हमारे पास आवास सॉफ्ट एक पोर्टल है
0: जी
1: जिसमें MIS पे हमारा पूरा डेटाबेस हर समय अवेलेबल रहता है,
0: जी
1: जिस पर कि हम देख सकते हैं कि कितने लाभार्थी रजिस्टर हुए, कितने लाभार्थियों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई है, सेकेंड
0: जी
1: इंस्टॉलमेंट चली गई है, उनके मकान का स्तर कहाँ तक पहुंचा है अभी। उसके अलावा हम आवास प्लस 2024 में हमने नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि फेस ऑथेंटिकेशन।
0: जी
1: तो जब सर्वे होता है उस दौरान जो लाभार्थी है
0: जी
1: उसका फेस ऑथेंटिकेशन होता है, EKYC होती है
0: जी
1: जिसमें उसमें उसके बैंक का खाता जो आधार से लिंक्ड है
0: जी
1: वही लिया जाता है, और डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर होता है पैसे का, DBT हम जो है उनके
0: जी जी
1: अकाउंट
0: जी
1: में डायरेक्टली ट्रांसफर
0: पैसा
1: करते
0: भेज रहे
1: हैं।
0: हैं जी
1: तो ऐसा नहीं हो पाता है कि गलती से किसी और के अकाउंट में चला जाए या
0: जी
1: कोई और जो है वो लाभ उठा ले उसका, और असली में जो लाभार्थी है उस तक कोई भी राशि
0: ना
1: ना पहुंच
0: पहुंचे
1: पाए। तो
0: जी
1: इन सारी चीजों को हटाने के लिए, इन बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल इसमें किया
0: जी
1: गया है, और अब जो सर्वे चल रहा है 2025 से, इसमें बल्कि हमने AI का भी इस्तेमाल किया है।
0: जी
1: तो AI के इस्तेमाल से अगर कहीं पर भी डुप्लीकेशन है
0: जी
1: या
0: जी
1: गलत डाटा फीड हुआ है या फोटोग्राफ्स जो हैं वो उस जगह के नहीं हैं,
0: नहीं है
1: वो
0: हाँ
1: एकदम से पकड़ में आ जाते हैं। और उसके अलावा जियो टैगिंग है,
0: जी
1: जो आपको 5 स्टेजेस पर जियो टैगिंग होती है।
0: जी
1: एक बार जब वो सर्वे करने के लिए जाते हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: एग्जिस्टिंग साइट जहां पर कि किसी व्यक्ति का घर अभी है, भले ही वो टूटा हुआ है या नहीं है,
0: जी
1: तो वो प्रपोज साइट कौन सी है जहां पे कि घर का निर्माण होगा, उनका
0: जी
1: जियो टैगिंग होता है। उस फोटोग्राफ में जो दिनांक है और समय है जब वो
0: जी
1: फोटोग्राफ लिया जा रहा है वो
0: वो
1: अंकित हो जाता
0: डाला
1: है,
0: जाता है जी
1: और उसके बाद जब सैंक्शन होता है इंस्टॉलमेंट्स का, तो उसके बाद जब सैंक्शन उसको लाभार्थी को मिलता है उस समय जियो टैगिंग होता है, और इंस्टॉलमेंट्स जब रिलीज होती हैं
0: जी
1: कंप्लीशन होता है उस स्टेज पे जियो टैगिंग होता है।
0: लाभार्थी को कहाँ से पता चलता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट आ गई है?
1: इंस्टॉलमेंट जो है वो डायरेक्टली उसके खाते में जाती है,
0: जी
1: तो इस तरह से उनको ये पता लग जाता है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है।
0: जी
1: उसके अलावा जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है
0: जी
1: तो हमारे ब्लॉक से स्टाफ जो है वो नियमित तौर पर वहां पर विजिट करते हैं,
0: जी
1: तो वो लाभार्थी को अवगत कराते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स आने के बाद आप अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए,
0: जी
1: और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद जो अगली इंस्टॉलमेंट्स रिलीज होंगी वो
0: जी
1: तभी रिलीज होती हैं जब हमारे कर्मचारी वहां पहुंच के जियो टैगिंग करते हैं कि
0: जी
1: मकान इस स्तर तक बन चुका है, अब अगली इंस्टॉलमेंट रिलीज की जा सकती है।
0: जी
1: तो जब वो जियो टैगिंग हो जाती है उसके बाद बेनिफिशियरी को ये पता रहता है कि अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट उनके खाते में आने
0: आने
1: वाली
0: वाली
1: है।
0: है जी। डॉक्टर सोनिया जी, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं से किस प्रकार से जोड़ा गया है?
1: देखिए, कन्वर्जेंस आजकल हम हर एक स्कीम में कर रहे हैं।

0: मिशन से जुड़ा है, उनको शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं।
1: 12,000 रुपए की राशि अलग
0: जी
1: से शौचालय बनाने के लिए दी जाती है,
0: जी जी
1: और जो राशि हम मकान बनाने के लिए दे रहे हैं उसमें ये निश्चित है कि वो मकान 25 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बनेगा,
0: जी
1: और साथ साथ उसमें एक कमरा कम से कम और एक रसोई घर होना जरूरी है अलग से।
0: जी
1: तो इसमें एक रसोई और शौचालय का प्रावधान उसके साथ है। जिसको भी हम ये सहायता देते हैं उनको 12,000 रुपए की अतिरिक्त राशि
0: जी
1: स्वच्छ भारत मिशन से जोड़कर शौचालय के निर्माण के लिए दी जाती है।
0: जी
1: और उज्ज्वला योजना है, एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया जाता है, जल
0: जी
1: जीवन मिशन के माध्यम से उनको पाइपलाइन वाटर हर घर तक पहुंचाया जाता है।
0: जी
1: तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिला है लाभार्थी जो है उनका, उस परिवार की लाभार्थी महिला जो है उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े होना जरूरी है।
0: जी जी
1: और सबसे अच्छी बात एक ये है इस योजना में कि जो मकान है वो महिला के नाम पर बनता है,
0: जी
1: तो इससे महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है हमारा
0: वो
1: वो
0: भी
1: भी पूरा
0: पूरा हो रहा
1: होता
0: है।
1: है।
0: जी।
1: क्योंकि ये जरूरी है कि वो मकान महिला के नाम पर ही बने तो संपत्ति में भी महिला का अधिकार जो है वो
0: बन
1: अपने
0: जाता
1: आप
0: है।
1: आ जाता है।
0: जी
1: तो ये एक बहुत अच्छा पहलू है इस योजना का कि महिलाओं का सशक्तिकरण
0: जी
1: इसके साथ साथ हो रहा है।
0: जी केंद्र की सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, महिला सशक्तिकरण भी हो गया, मकान भी बन गया, विकास भी हो गया। जी सोनिया जी, मौजूदा समय में इस योजना के तहत हिमाचल में कितने पात्र लोगों के पक्के मकान का प्रस्ताव है, और आवेदन के बाद कितने समय तक लाभार्थी को जो है इसका लाभ मिल जाता है?
1: देखिए अभी जो हमारा सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 2,23,000 लोगों ने आवेदन किया है,
0: जी
1: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन आवेदनों की हमें दोबारा से जांच करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि जो भी डेटा उसमें भरा गया है
0: जी
1: वो सही है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी लाभार्थी छूटे ना और
0: जी
1: किसी भी अपात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ ना मिल जाए।
0: ना
1: तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है,
0: जी
1: और उसके बाद जब हमारी एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनेगी उसको रखा जाएगा ग्राम सभा में।
0: जी
1: तो ग्राम सभा के द्वारा इस लिस्ट को पास किया जाता है, तो
0: जी
1: ये ग्राम सभा में जब जाती है लिस्ट तो ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि सिर्फ पात्र व्यक्ति जो है वही इस लिस्ट में है। और जब हमारी पीडब्ल्यूएल ग्राम सभा से पास हो जाती है
0: जी
1: उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट्स उनको रिलीज करना शुरू कर देते हैं।
0: जी जी डॉक्टर सोनिया जी, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शुरू की है, और योजना के तहत किसानों या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग आप देख रही हैं तो ये योजना भी चल रही होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वाटरशेड विकास घटक,
0: जी
1: जिसके अंतर्गत हमारा काम ये रहता है कि बारिश का जो पानी है
0: जी
1: वो ऐसे ही व्यर्थ ना बह जाए, हम उसको मिट्टी में संचित करें
0: जी
1: या चेक डैम और तालाब बनाकर उसे संचित करके रखें और उसे खेती में इस्तेमाल करें।
0: जी
1: तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो हम पानी को व्यर्थ होने से बचाएं,
0: जी
1: उसे संचित करें, खेती में इस्तेमाल करें, और साथ साथ हम सॉइल कंजर्वेशन भी करें। तो
0: जी
1: इस योजना के तहत हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, इस तरह के काम करते हैं जिससे मृदा संरक्षण और जल
0: जल
1: संरक्षण
0: संरक्षण दोनों
1: दोनों
0: साथ।
1: सुनिश्चित हों, और साथ ही साथ खेती में भी हम उसे इस्तेमाल करके किसानों की मदद कर पाएं, किसानों की फसल की पैदावार बढ़ सके,
0: जी
1: या जिस एरिया में अभी तक खेती कर रहे हैं हमारे किसान
0: जी
1: वो
0: जी
1: उससे ज्यादा एरिया में खेती कर पाएं,
0: कर
1: या
0: सकते
1: अगर वो एक क्रॉप एक साल में उगाते हैं तो वो 2 या 3 क्रॉप्स उगाने लगें।
0: जी
1: ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
0: जी इस योजना के तहत कौन कौन से काम हैं जो करवाए जा रहे हैं मौजूदा समय में?
1: इस योजना के तहत हम चेक डैम्स बनाते हैं, तालाब
0: जी
1: बनाते हैं, प्लांटेशंस के काम करते हैं,
0: जी
1: कॉन्टूर ट्रेंचेस बनाते हैं जिससे कि वर्षा का पानी जो है वो मिट्टी में ही रचा रहे
0: जी
1: और उसको जो है वो यूज करके हम पैदावार जो है मिट्टी की बढ़ा
0: बढ़ा
1: सकें,
0: सके। जी
1: उसकी उपजाऊ क्षमता को हम बढ़ा सकें।
0: जी
1: इस तरह से हम क्रिएट वायर्स लगाते हैं,
0: जी
1: प्लांटेशंस के काम करते हैं, और
0: जी
1: ये सारे काम जो है वो पंचायतों में निजी भूमि पर से ज्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि जो कॉमन लैंड है वहां पे किए जाए।
0: पंचायतों के माध्यम से
1: जी,
0: इन कामों को जो है बांटा जाता है।
1: इसके लिए योजना शुरू होने के समय, जैसे अभी 2.0 का अंतिम चरण चल रहा है,
0: जी
1: तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जब शुरू हुई थी तो उस
0: जी
1: समय डीपीआर का निर्माण किया जाता है।
0: जी
1: उस डीपीआर के प्रिपरेशन में पंचायतों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इवन
0: जी
1: विलेज लेवल कमेटीज होती हैं हमारी, वाटरशेड विलेज डेवलपमेंट कमेटीज,
0: जी
1: तो उस कमेटी का निर्माण करते हैं हम और गांव के लोगों को उस योजना में साथ जोड़ते हैं।
0: जी
1: तो गांव के लोग ये तय करते हैं कि उनके क्षेत्र में खेती को और ज्यादा सफल बनाने के लिए किस किस प्रकार के इंटरवेंशन की जरूरत है।
0: जी
1: तो लोगों के आइडियाज के बाद ये काम हम फाइनलाइज करते हैं और
0: जी
1: फिर इनकी डीपीआर बनती है।
0: जी
1: तो अभी जैसे हम कृषि सिंचाई योजना

0: के 2.2 के अंतिम चरण में है और उसके
1: जी
0: बाद
1: जी
0: 3.2 हमारा शुरू होने जा रहा है। तो
1: जी
0: उसके डीपीआर प्रिपरेशन में अभी हम फिर से ये सारी की सारी एक्टिविटीज करेंगे कि
1: जी
0: हम अब विलेज लेवल कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे और
1: जी
0: गांव के लोग ही ये तय करेंगे कि उनके गांव में किस तरह के काम होने चाहिए। तो
1: जी
0: इस तरह से हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम एक पूरे एरिया को, पूरे एक एरिया में वाटरशेड को डेवलप करते हैं।
1: जी कितना काम इस योजना के अंतर्गत हो चुका है हिमाचल प्रदेश में?
0: देखिए 2.0 में अभी तक हमने 121 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च कर लिए हैं
1: जी
0: इन सारे कामों को करने के लिए, जो
1: जी
0: जल
1: जी
0: संरक्षण और मृदा संरक्षण से जुड़े हुए काम हैं
1: जी
0: उनको करने के लिए अभी तक हम कर पाए हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि लगभग अगले सितंबर तक
1: जी
0: हम 150 करोड़ के काम जो हैं वो कंप्लीट करें इस योजना के तहत।
1: लक्ष्य रखा है
0: जी
1: सितंबर तक का।
0: जी
1: जी सोनिया जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 साल के अब तक के कार्यकाल में महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की निर्णायक भागीदार बनाने पर जोर दिया है। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई पहल शुरू की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ रही हैं और कुछ हमें जानकारी मिली है कि इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ भी जोड़ा गया है। तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे?
0: जी, जैसे हमने अभी कन्वर्जेंस की बात की थी कि हम
1: जी
0: एक योजना के साथ जो अन्य योजनाएं हैं उनको भी जोड़ के ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी तक पहुंच सके, उस पर
1: जी
0: भी कन्वर्जेंस पर भी काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा ये मैंडेटरी रहता है कि जो भी महिलाएं हैं लाभार्थी परिवार की
1: जी
0: वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हों,
1: जी
0: और हम पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितने परिवारों को हमने बेनिफिट दिया और
1: जी
0: उनमें से कितने परिवार की महिलाएं जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इसका
1: जी
0: पूरा डाटा हमारे पास रहता है, पोर्टल पे अपलोड होता है जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। तो
1: जी
0: स्वयं सहायता समूहों से उनका जुड़ना एक अनिवार्य शर्त है इस योजना का लाभ उठाने के लिए।
1: जी
0: तो उसके जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि महिलाएं थोड़ा स्वरोजगार की तरफ भी मुड़ें
1: जी
0: और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करें जुड़ के, ताकि वो आर्थिक रूप से भी स्वावलंब हो पाएं।
1: जी डॉक्टर सोनिया जी, जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड का निर्माण किया जा रहा है या वाटरशेड का प्रावधान है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप?
0: जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बड़ी योजना है और वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट है,
1: जी
0: जिसमें हम एक एरिया में एक वाटरशेड को डेवलप करते हैं।
1: जी
0: और वाटरशेड को डेवलप करने का मतलब है कि उस एरिया में बारिश का पानी जितने भी स्रोतों से पहुंचता है
1: जी
0: उसे
1: जी
0: कंजर्व करना और
1: जी
0: उसे खेती में इस्तेमाल करना,
1: जी
0: ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। लेकिन जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके बारे में लोगों को फिर भी जानकारी रहती है,
1: जी जी
0: लेकिन वाटरशेड क्या है इस बारे में लोग अनभिज्ञ होते हैं।
1: जी
0: तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वाटरशेड का कॉन्सेप्ट जो है
1: जी
0: वो लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की समझ में आए कि वाटरशेड क्या है,
1: जी
0: वाटरशेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट क्या है,
1: जी
0: स्कीम में किस तरह के काम होते हैं और वो कैसे इसका लाभ उठा के अपने क्षेत्र में कृषि की उन्नति करा
1: कर
0: सकते
1: सकते हैं
0: हैं।
1: जी
0: और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने इसलिए इस बात को समझने के बाद इसकी थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की लोगों में, और
1: जी
0: नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमने एक महीना वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया था,
1: जी
0: जिसमें एक हमने राज्य स्तर पर एक आयोजन किया वाटरशेड महोत्सव का
1: जी
0: और उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर इस महोत्सव का आयोजन किया
1: जी
0: गया।
1: जी
0: और इसके साथ ही हमने सोशल मीडिया पर एक रील कॉम्पिटिशन भी कराया, फोटो कॉम्पिटिशन और रील कॉम्पिटिशन,
1: जी
0: जो एक सरकारी स्कीम में शायद पहला ऐसा प्रयास था
1: जी
0: जहां पे कि लोगों के बीच में जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उसे लेकर हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और
1: जी
0: लोगों को ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, और लोगों के द्वारा ही, लोगों ने ही उसमें रील्स बनाई हैं,
1: जी
0: लोगों के ने ये सबसे पहले स्कीम के बारे में सुना,
1: जी
0: जानने की कोशिश की कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में,
1: जी
0: उनके घरों के आसपास क्या वाटरशेड में कभी कोई काम हुआ है।
1: जी
0: लोग पंचायतों तक पहुंचे, रील्स बनाने के लिए वो ब्लॉक्स तक पहुंचे जहां
1: जी
0: से उन्होंने जानकारी हासिल की।
1: जी
0: और
1: जी
0: इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर भी हमने उन सारे कामों की लिस्ट डाली थी जहां पर वाटरशेड में काम हुए हैं उनकी लोकेशन के साथ। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पहली बार ऐसा हुआ कि लोग जागरूक हो पाए वाटरशेड के बारे में, लोगों को पता चल पाया।
1: जी
0: और जब हमने उन रील्स को देखा तो हमें ये सबसे अच्छा पहलू इस पूरे वाटरशेड महोत्सव और सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन का ये लगा कि ये जो जानकारी हमारे पास आई आई है वॉटरशेड के बारे में, ये हमारे माध्यम से हमने लोगों को नहीं बताया बल्कि लोगों ने ही एक दूसरे को बताया
1: आगे से
0: लोगों के माध्यम से ये जानकारी एक दूसरे तक पहुंची और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची और बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने रील्स बनाए हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। आप अभी भी जाएं तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि वॉटरशेड महोत्सव अगर आप हैशटैग इस्तेमाल करेंगे तो इसके दौरान बनी हुई सारी रील्स आपके सामने आएंगी। 50,000 रुपए के इनाम भी रखे थे जो पहले 4 विजेता होंगे, सबसे ज्यादा जिनके व्यूज होंगे या जिनका कंटेंट सबसे अच्छा होगा उनके लिए। तो लोगों को ये हमारा जो कंपटीशन था बहुत ज्यादा आकर्षक लगा, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस वॉटरशेड महोत्सव में जो कॉम्पिटिशन हुआ है उसमें। तो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस कॉम्पिटिशन का यही था कि लोगों को पता चले वॉटरशेड क्या है और लोग इस योजना का लाभ उठा पाए। तो उसमें हम सफल हुए। वॉटरशेड जो किसी ने सुना भी नहीं था, लोगों का सवाल होता था वॉटरशेड और योजनाओं के बारे में हमने सुना है लेकिन वॉटरशेड क्या है?
1: क्या है पता नहीं
0: तो
1: था।
0: उसकी जानकारी उनको इस कंपटीशन के माध्यम से मिली और हम लोगों को बताने में कामयाब हुए कि कैसे वर्षा के पानी को हम संचय कर सकते हैं और हम सॉयल कंजर्वेशन के क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से हम वॉटरशेड योजना में ये सारे काम करते हैं और अगर आप इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहें क्योंकि जन भागीदारी जो है
1: वो जरूरी है
0: उस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है इस योजना में। खास करके हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो इस योजना में काम हो रहे हैं उसमें कुछ परसेंट जन भागीदारी का कंट्रीब्यूशन हो और जब हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं अपने ब्लॉक्स की तो हम उनके बीच में एक कंपटीशन करवाते हैं जिसमें जो विनर ब्लॉक्स होते हैं हम उनको 25 लाख की अतिरिक्त राशि वॉटरशेड के कामों के लिए देते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन का उद्देश्य ये भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना,
1: लोगों को जोड़ना इसमें,
0: ताकि हर ब्लॉक में जो काम चल रहे हैं उसमें वो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, लोगों को जोड़ना, लोगों को स्कीम के बारे में बताना और जो स्कीम में काम होने वाले हैं वो लोग ही तय करें और लोग ही प्लान करें उस काम के लिए, ये हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहता है।
1: जी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसानों को कुछ उपदान दिया जाता है या कुछ उपकरण दिए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
0: जी, हम देखिए इस योजना में डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करते। हम कुछ काम कॉमन लैंड पे ऐसे करते हैं जिससे कि पानी का संचय हो और वहाँ आसपास के एरिया में खेती में उससे मदद मिल पाए। लेकिन एक हम इसमें ये करते हैं कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम क्लस्टर्स में पंचायत में एक जगह सेंटर बनाकर भी इन इक्विपमेंट्स को रखते हैं जहां पर लोग एक नॉमिनल सी फीस देकर उन इक्विपमेंट्स को ले जाके इस्तेमाल करके
1: दोबारा वापिस कर सकते हैं।
0: जी,
1: डॉक्टर सोनिया जी, अभी हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे तो मैं जानना चाहूंगी कि इस योजना में किसी वर्ग विशेष या आरक्षित या पिछड़े वर्गों के लिए अलग से प्रावधान है?
0: जैसे हमने कहा कि महिलाओं के ऊपर भी इस योजना में खास फोकस है कि जो मकान बनेगा उसकी स्वामिनी जो है वो महिला होनी चाहिए। उसी तरह से जो हमारे SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। कम से कम 60% हमारा टारगेट जो है वो SC और ST कैटेगरी से होना चाहिए और अगर वो कम है तो उसके बाद ही हम जनरल कैटेगरी में उन घरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर 60% जो है वो योजना का उद्देश्य ये है कि वो इस तरह से जो पिछड़े वर्ग हैं समाज के उन तक इसका लाभ पहुंच पाए। और 3% इसमें ये भी प्रावधान है कि दिव्यांग जन जो हैं उनको हम इसमें ले पाए, हमारे लाभार्थी जो हैं वो कम से कम 3% उनका जो है वो दिव्यांग जन होने चाहिए।
1: आप अपने श्रोताओं को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास ग्रामीण विकास विभाग में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। तो इन सभी योजनाओं के बारे में जाने और आप किस तरह से पात्र हो सकते हैं इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाएं या पंचायत में जाएं, पंचायत में सचिव हैं, प्रधान उपप्रधान हैं, उनके माध्यम से इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और जब हम कुछ ऐसी योजना है जिनकी प्लानिंग जब हम करते हैं गांव के स्तर पे और पंचायत के स्तर पे तो उसमें भाग लें ताकि इन योजनाओं में क्या काम होने वाले हैं, किस तरह से वो काम होंगे, उसमें आपकी जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े।
1: जी, सोनिया जी, आप हमारे स्टूडियोज में आईं और विभिन्न योजनाओं पर आपने विस्तार से जानकारी दी। मैं आशा करती हूं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की

0: समय उठाए गए अभूतपूर्व कदम विषय पर डॉक्टर सोनिया ठाकुर हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त निदेशक व प्रदेश नोडल अधिकारी पीएम आवास योजना हिमाचल प्रदेश से राजकुमारी चंदेल की भेंट वार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर सेवानिवृत्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उपनिदेशक श्री मेलाराम शर्मा से डॉक्टर हुकम शर्मा की भेंट वार्ता। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जा रहा है।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसे आप जानते ही हैं, आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इन 90 वर्षों की जब हम बात करते हैं या सोचते हैं अपने सफर के बारे में तो बहुत सी मधुर स्मृतियां हमारे जहन में आती हैं। एक दौर था जब हमें चिट्ठियां मिलती थी हमारे श्रोताओं की, उसके बाद फोन इन कार्यक्रम शुरू हुए, फिर ईमेल बेस्ड कार्यक्रम शुरू हुए, यानी लगातार एक निरंतर प्रवाह में आकाशवाणी ने अपने आप में बहुत से बदलाव किए हैं। शुरुआती दौर की बात करें और आज के दौर की बात करें तो बहुत कुछ बदल चुका है। आकाशवाणी की जो सेवाएं हैं वो डिजिटल प्रसारण शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे वो एक जो हम पुराना दौर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दौर भी बड़ा अच्छा लगता है जब उन मधुर स्मृतियों को हम याद करते हैं। और ना केवल हम, हमारे वो श्रोता भी जो इस पूरे सफर में हमारे हम सफर रहे और जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन, जिनका स्नेह प्यार हमें हर कदम पर मिलता रहा। आज एक ऐसे ही श्रोता आकाशवाणी स्टूडियोज में हमारे साथ हैं, श्री मेलाराम शर्मा जी। आप उपनिदेशक गीत एवं नाट्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिला सिरमौर के एक दूर दराज गाँव से संबंध रखते हैं। हमारे श्रोताओं को आप स्वयं अपना परिचय दें कि आपका जिला सिरमौर का जो गांव है वो कहाँ पे स्थित है, क्योंकि देखिए हमारा जिला सिरमौर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की लोक संस्कृति या जो हम कहें कि एक सांस्कृतिक विरासत जो है जिला सिरमौर की, उसकी मेरे ख्याल तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। तो बताएं हमारे श्रोताओं को अपने गांव के बारे में थोड़ा।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश में उपनिदेशक गीत एवं नाट्य प्रभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैं सिरमौर जिला के बहुत ही जिसको गिरिपार का क्षेत्र कहते हैं पिछड़ा इलाका है, संगढ़ा विकास खंड में एक गाँव पड़ता है अरट, वहाँ का निवासी हूँ। मैंने वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की और मैं तो मुझे गौरव हो रहा है बताते हुए कि मैं अपने गांव का पहला मैट्रिकुलेट हूँ और अपनी पंचायत का पहला ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि उन दिनों जो है शिक्षा का इतना प्रसार नहीं होता था। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं एक लंबे अंतराल तक जो है आकाशवाणी शिमला से भी जुड़ा रहा हूँ। ना केवल मैंने सिरमौरी बोली में यहाँ कार्यक्रम किए, हिंदी में भी अनेक विषयों पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया जाता रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो लोक संगीत समिति है हिमाचल प्रदेश की, उसमें भी मैं जो है प्रसार भारती द्वारा मुझे नामित किया गया है एक निर्णायक सदस्य के रूप में, तो मैं आकाशवाणी से लगातार जुड़ा रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज जबकि आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो चुके हैं तो मुझे भी हिमाचल प्रदेश के लोगों से बातचीत करने का जो है आपके माध्यम से मौका मिल रहा है।
1: तो शर्मा जी, अगर हम प्रसारण की बात करें, रेडियो प्रसारण जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, क्योंकि अब तो आप वरिष्ठ नागरिकों की सूची में शामिल हो चुके हैं, और जब आप स्कूल जाते थे या जब से आप, हम यूं कहें कि रेडियो के बारे में जो आपका अनुभव रहा, पहला अनुभव कब आपने देखा कि रेडियो में कुछ चल रहा है या आप रेडियो सुन रहे हैं?
2: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब मेरा जन्म जो है 1959 का, और मैंने 75 में मैट्रिक पास की, लेकिन 1975 मतलब 70 के दशक में भी हमें आभास हो गया था रेडियो जो है प्रचार प्रसार का और सूचना संप्रेषण का एक बहुत सशक्त माध्यम हुआ करता था, और हुआ करता था नहीं, अभी भी है, क्योंकि जिस तरह से ऑथेंटिक सूचना जो है आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, क्योंकि उस जमाने में 70 के दशक में जब हम होशोहवास में संभाला, क्योंकि 1975 में मैंने मैट्रिक पास किए, तो गांव में जो है सूचना प्रसारण का कोई भी ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं होता था। उन दिनों आप जानते हैं कि मोबाइल तो होते ही नहीं थे, टेलीविजन टेलीविजन भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, और सरकारी सूचनाओं के लिए या सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लोगों तक कैसे पहुंचे, और लोगों की जो समस्याएं हैं वो चाहे समाचार के माध्यम से हो तो वो सरकार तक कैसे पहुंचे, ये सारा काम जो है रेडियो के माध्यम से होता था। और इतना ही नहीं, जैसे आपने कहा कि सिरमौर की बड़ी समृद्ध लोक संस्कृति है, बहुत समृद्ध सिरमौर का लोक संगीत भी है, तो उस टाइम भी जो आकाशवाणी के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे गीत संगीत के, तो वो उसको सुनने के लिए भी मुझे अभी तक याद है कि रेडियो तो आम आदमी के पास रेडियो नहीं होता था उन दिनों
1: जी,
2: हाँ, क्योंकि क्षमता नहीं होती थी, लेकिन वो जो सूचना जनसंपर्क विभाग, जिस विभाग से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तो पहले शुरुआत में विभाग जो है हर गांव में और हर पंचायत में एक एक रेडियो सेट, वहां पे विभाग की तरफ से बड़ा रेडियो सेट लगाया जाता था, और उसको जो है शाम को, खासकर जिस वक्त खबरें होती थी और शाम को जिस वक्त जो है सिरमौरी कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम होते थे, तो जिस आंगन में वो रेडियो बजता था उसमें जो है दर्जनों लोग बैठकर जो है रेडियो के कार्यक्रम सुनते थे, और उनको सूचना प्राप्त करने का केवल एकमात्र यही माध्यम हुआ करता।
1: यानी लोग एकत्रित होकर, गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, तो कितना अच्छा वो माहौल होता होगा, कितना दर्शनीय वो नजारा होता होगा। तो शर्मा जी, उस वक्त का जो रेडियो सेट होता था और आज जो रेडियो सेट है, क्योंकि हमने तो वो दौर देखा रही है, तो वो रेडियो सेट भी कुछ अलग तरह का होता होगा।
2: बिल्कुल अलग रेडियो सेट होता था, और वो बहुत बड़े साइज का रेडियो होता था, और उसका जो स्पीकर है वो अलग से एक भोंपू जो है छत के ऊपर लगाया होता था
1: जी,
2: तार वहां से जोड़ के, और फिर हर महीने जो है सूचना जनसंपर्क विभाग के रेडियो मैकेनिक जो है वहां का दौरा करते थे, और उसको देखते थे कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और कई बार अगर नहीं काम कर रहा है तो वहां के जो उसका रेडियो केयर टेकर होता था गांव का कोई एक ग्रामीण, वो इतला भेजता था डीपीआरओ ऑफिस को, तो फिर वहां से रेडियो मैकेनिक आता था उसको ठीक करके जाता था, तो वो एक अलग किस्म का माहौल होता था। उसके बाद तो खैर एक फिर 90 के दशक में 80 के दशक में तो हर घर में रेडियो आने शुरू हो गए, जैसे जैसे लोगों की क्षमता बढ़ती गई अपने रेडियो सेट खरीदने शुरू किए, लेकिन सबसे पहले तो वो तो बहुत बड़ा, एक तो साइज में भी बड़ा होता था वो रेडियो
1: जी,
2: और उसको जो है बड़े आराम तरीके से उसको ट्यूनिंग करते थे, और उसके बाद वो जो उसका अलग से जो स्पीकर होता था छत के ऊपर लगाया हुआ, वो उसके माध्यम से आवाज जाती थी। तो बाद में फिर जैसे जैसे रेडियो की टेक्नोलॉजी विकसित होती रही तो रेडियो सेट जो है वो मतलब
1: जी, अलग, अब तो मोबाइल तक पहुंच गया है, मोबाइल में रेडियो सेट,
2: अब तो आज तो फिर मोबाइल ने ले लिया ना रेडियो सेट का भी सारा अपना जितना भी काम
1: जी। तो एक बात और जानना चाहेंगे, उस वक्त जो उस रेडियो सेट को ऑपरेट करता, क्योंकि उसको भी लोग खास नजर से देखते होंगे कि हाँ ये व्यक्ति है जो रेडियो को ट्यून कर रहा है, रेडियो हमें सुना रहा है, तो उस व्यक्ति को कैसे देखा जाता था?
2: अच्छा, जो एक रेडियो सेट सरकार द्वारा या सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा गांव में लगाया जाता था, वो जिसके घर में वो लगता था उसी को रेडियो केयर टेकर बोलते थे, और वही उसको ऑपरेट करता था, उसके बिना कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता था
1: जी।
2: और उसको इतनी, और लोग जो है जब शाम को जैसे किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का इंटरेस्ट सिरमौरी कार्यक्रम में, तो उसको पता है कि 5 बजे सिरमौरी कार्यक्रम आना, तो वो कार्यक्रम संगीत सुनने वाले लोग वहां पहुंचते थे, वो उसके आगे हाथ जोड़ते थे कि आप हमारे लिए रेडियो शुरू कर दो, तो वो तो हीरो होता था एक किस्म से गांव में। और जैसे न्यूज के टाइम में जिनको खबरों की रुचि होती थी, अगर मतलब वो बाई चांस इधर उधर हुआ कहीं, तो उसको स्पेशली, क्योंकि उस दिन ना तो मोबाइल होते थे, तो ढूंढ के लाया जाता था और उसके आगे हाथ जोड़ के कि जी आप इसको शुरू कर दो, और आदमी मतलब उसको छू नहीं सकता था रेडियो को, ना ही उसको ऑन कर सकता था
1: जी। यानी ये वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता था उस गांव का
2: जी। हाँ।
1: और गांव में, पूरे गांव में वो रेडियो सुनाई देता था, अगर कोई अपने घर पे भी, वहां पे भी नहीं भी इकट्ठा नहीं हुए वहां पे उसके प्रांगण में, तो हर घर तक वो पहुंचता था मेरे ख्याल से,
2: क्योंकि वो स्पीकर ही इतना बड़ा लाउड स्पीकर होता था, तो वो उसकी आवाज बहुत तक सुनाई देती थी, तो जो गांव के अधिकतर लोग तो गांव के प्रांगण में पहुंच जाते थे, लेकिन कुछ लोग तो जो है दूर अपने कहीं भी बैठ के खेतों में काम कर रहे हैं या अपने घर के पास ही कोई कुछ काम कर रहे हैं, तो बैठे बैठे वहां तक उसकी आवाज जाती थी, सुनते थे। और मैंने तो ऐसे भी नजारे देखे हैं जब शाम को जो है रेडियो पे जब गीत संगीत और जैसे सिरमौरी कार्यक्रम, नाटियों के कार्यक्रम होते थे, तो रेडियो पे नाटियां चल रही है और आंगन में लोग नाच रहे हैं उसको सुन के, तो मैं समझता हूं कि ये जो आकाशवाणी ने हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है, हमारी जो समृद्ध लोक संगीत है, प्राचीन लोक संगीत है, और जिसमें हमारी लोक गाथाएं भी होती है, उनको जिंदा रखने के लिए, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए भी हमारे जो आकाशवाणी का है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी अगर देखा जाए तो हमारी जो पारंपरिक लोक कलाएं हैं, पारंपरिक लोक गाथाएं हैं और पारंपरिक जो लोक संगीत की हमारी विधाएं हैं, उनको जीवंत रखने के लिए आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: तो जिला सिरमौर के कुछ ऐसे लोक कलाकार जिनको आप बचपन में सुनते थे और आज भी सुनते होंगे क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग्स तो आकाशवाणी के पास उपलब्ध है ही, आपके जहन में कोई कलाकार हैं जो पुराने कलाकार आकाशवाणी के हुआ करते थे या कोई जो अनाउंसर्स होते थे, क्योंकि अनाउंसर्स या उद्घोषक भी आकाशवाणी का आईना माना जाता है या कहें कि जो एक चेहरा उसको कहा जाता है कि आकाशवाणी का चेहरा ये उद्घोषक है, तो वो चेहरा तो सभी को ही मतलब हर व्यक्ति को याद होता है कि कौन उद्घोषक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है या कौन लोक गायक गीत गा रहा है, तो ऐसे कुछ नाम आपको याद हैं?
2: जी बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो सिरमौर से जो सबसे पहले लोक कलाकार होते थे जिनको लोग बहुत ज्यादा सुनते थे, जैसे किशन सिंह ठाकुर होते थे, हेतराम शर्मा जी होते थे, उनके गीत जो है इतने जबरदस्त हुआ करते थे कि उनकी एक तो आवाज ही अलग से होती थी।
1: जी, मतलब लेखराम शर्मा और किशन सिंह ठाकुर,
2: हाँ, बहुत सुरीली आवाज उनकी होती थी, तो जब उनके रेडियो पे गीत आते थे तो लोग जो है उनको बड़े चाव से सुनते थे।
1: जी, उसके बाद भी दौर आया कृष्णलाल सहगल साहब और बहुत सारे
2: वो तो बाद के हैं, लेकिन डॉक्टर
1: शुरुआती दौर में,
2: हाँ, शुरुआती तौर की कर रहा हूं मैं बात। और उसके बाद तो खैर डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जो आज जिनको आज पंडित की उपाधि से भी नवाजा गया है।
1: जी जी,
2: और पहले ये ग्रेड आर्टिस्ट होते थे, पंडित
1: टॉप ग्रेड में,
2: टॉप ग्रेड में इस आज की,
1: और हिमाचल के पहले लोक कलाकार,
2: हाँ, हिमाचल के पहले लोक कलाकार भी है। और वो जो मैं समझता हूं कि हमारे जो जितने भी आज लोक कलाकार है हिमाचल प्रदेश के, सिरमौर के तो है ही है, अधिकतर लोग उनको जो है बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और गुरु मानते हैं। और हकीकत में डॉक्टर कृष्णलाल सहगल हैं भी गुरु, क्योंकि उनका अनुसरण किया जाता है जब आकाशवाणी से उनका प्रसारण होता है, उनके गीतों का प्रसारण होता है।
1: जी, यानी एक तरह से आप मानते हैं कि आकाशवाणी एक बहुत बड़ा मंच है।
2: जी, आकाशवाणी ना केवल लोक कलाकारों को उनकी कला संप्रेषण का मंच है, बल्कि नवोदित कलाकारों के लिए सीखने का भी बहुत बड़ा एक मंच है। और कोई जैसे डॉक्टर कृष्णलाल सहगल पंडित की उपाधि से हुए हैं, तो लोग जो है उनको सुन सुन के उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो इससे बड़ा मंच जो है लोक संगीत के लिए और लोक कलाकारों के लिए कोई हो नहीं सकता।
1: तो शर्मा जी देखिए, अब तो एक प्रतियोगिता का दौर आ चुका है, एक वक्त था जब आकाशवाणी ही आकाशवाणी था और कुछ भी नहीं था, लेकिन आधुनिक दौर में अब बहुत सी प्राइवेट रेडियो आ चुके हैं और आकाशवाणी भी है उसी प्रतिस्पर्धा में, आप क्या कुछ सुझाव देंगे कि आकाशवाणी और आगे बढ़े, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हमारा ध्येय वाक्य है, इस वाक्य के साथ हम आगे बढ़ें, आपके कुछ सुझाव प्रसारण की दृष्टि से कोई सुधार आप चाहते हैं?
2: ऐसा है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्राइवेट मीडिया, प्राइवेट रेडियोज, बहुत सारे माध्यम अब शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में जहां तक मैं समझता हूं अगर क्रेडिबिलिटी देखी जाए तो क्रेडिबिलिटी के लिए आकाशवाणी का कोई अभी तक जो है सानी नहीं, इनका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता आकाशवाणी के बराबर जो क्रेडिबिलिटी के मामले में। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया में जो है ना आजकल बहुत फुहड़ता लोगों को जो है परोसी जा रही है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे लोक संगीत को और हमारी लोक विधाओं को जो है प्रदूषित किया जा रहा है, उनका जो पहलू है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है और उसको खराब किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी ने विशुद्ध लोक परंपराओं और लोक संस्कृति को बचा कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी है। और मैं समझता हूं कि अगर इसी परिपाठी को जो है आकाशवाणी लगातार बनाए रखेगी तो इससे बड़ा योगदान लोक संस्कृति और लोक संगीत के लिए और सूचना संप्रेषण के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सूचना प्रेषण, चाहे समाचार ले लो आप, चाहे आपकी दूसरी वार्ताएं ले लो, जो ऑथेंटिसिटी आपके कार्यक्रम में है, विश्वसनीयता जिसे कहते हैं, लोग जो है सुनी सुनाई बातों पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर कुछ आ रहा है, आजकल झूठी खबरें फैलाई जा रही है, लेकिन आकाशवाणी अभी भी लोग विश्वास करते हैं और जो आकाशवाणी से प्रसारण हो गया वही सच है, बाकी किसी पे कोई अभी विश्वास नहीं करता। तो इसलिए आकाशवाणी की जो विश्वसनीयता है मैं समझता हूं ये बनी रहनी चाहिए, और जो जिस तरह का योगदान लोक संस्कृति, लोक कलाओं और लोक संगीत के प्रसारण और संवर्धन और संरक्षण के लिए आकाशवाणी करती है और करती रही है। इसी तरह से आगे बढ़ता रहे आकाशवाणी तो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान भी होगा और उपकार भी होगा।
1: मेलाराम शर्मा जी, आप सृष्टि श्रोता जब आकाशवाणी से जुड़े रहे पहले भी और हम आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि आपके स्नेह, आपके मार्गदर्शन और जैसे कि आपने कहा कि आकाशवाणी की विश्वसनीयता जन जन तक बहुत है, हम उस विश्वसनीयता को कायम रखेंगे। और आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए, आकाशवाणी प्रसारण से जुड़ी हुई जो तमाम बातें आपने साझा की हमारे श्रोताओं से, तो एक दौर जो पुराना दौर जिसके बारे में आपने चर्चा की, शायद बहुत लोगों को तो ये विश्वास भी नहीं होगा कि एक दौर वैसा भी रहा होगा, लेकिन आप उसके गवाह हैं, साक्षात गवाह हैं, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमारे कार्यक्रम से श्रोताओं से साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष पर सेवानिवृत्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उपनिदेशक श्री मेलाराम शर्मा से डॉक्टर हुकुम शर्मा की भेंट वार्ता। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से विशेष भेंट वार्ता। आपसे थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
5: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान

0: की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाने सुनिए। स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज़ें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीर दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

इसके बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

तो दोस्तों ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान, एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर रात्रि के 10 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुनेंगे एंटी चिट्टा कैंपेनिंग के अंतर्गत आयोजित मिनी मैराथन कार्यक्रम पर रेडियो रिपोर्ट।
3: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।

0: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है चिट्टा मुक्त जीवन और स्वच्छ पर्यावरण पर रिज शिमला में आयोजित मिनी मैराथन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: युवा शक्ति समाज की रीढ़ होती है। युवा घर परिवार और समाज का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु कई बार युवा किन्हीं कारणों की वजह से अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं और नशे के शिकार हो जाते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में एंटी चिट्टा और स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस और पर्यावरण तथा जनगणना विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को चिट्टे के नशे और अन्य नशों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण चिट्टा मुक्त जीवन हमारा संकल्प, ये संदेश भी प्रमुखता से दिया गया। इस मिनी मैराथन में दो श्रेणियां रखी गई थी, पहली 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन और दूसरी 3 किलोमीटर की प्रेरणा दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ का शुभारंभ प्रातः हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मैराथन में देश व प्रदेश के विभिन्न भागों से आए हरेक वर्ग के लोगों ने भाग लिया। मैराथन का आकर्षण विशेष रूप से सक्षम बच्चे रहे। ये मिनी मैराथन नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ हिमाचल के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा सकता है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने अपने संदेश में कहा,
2: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूं। आज इसी दिन के हेतु यहां पर कार्यक्रम का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड पुलिस इनके साथ मिलकर के एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ, जिसमें मैराथन का आयोजन किया गया। तो पर्यावरण के साथ नशा मुक्ति पर भी शपथ भी दिलाई गई लोगों को कि हम इससे समाज में भी सुधार के लिए बड़ा जरूरी है, हर कोई व्यक्ति संकल्प ले। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि समाज के लिए ये बहुत बड़ा नासूर है, उस नासूर को खत्म करने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित करने के लिए इस अभियान को आगे चलाएंगे।
1: इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपस्थित लोगों को हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त एवं स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित हरित हिमाचल के निर्माण हेतु निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करने की शपथ भी दिलाई।
3: भारत माता की, भारत माता की। हम सभी आज यह पवित्र शपथ लेते हैं,
4: यह पवित्र शपथ लेते हैं
3: कि हम
4: स्वयं
3: कभी चिट्टा
4: या किसी भी नशे का
3: सेवन
4: नहीं करेंगे
3: और
4: हम अपने
3: परिवार
4: मित्रों
3: और समाज को
4: चिट्टे
3: एवं नशे से दूर रहने के लिए जागरूक
4: एवं
3: प्रेरित करेंगे।
4: हम
3: हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने
4: तथा युवाओं
3: और
4: आने वाली पीढ़ियों
3: के सुरक्षित भविष्य के लिए सक्रिय योगदान
4: देंगे।
3: हम
4: अपने
3: पर्यावरण
4: जल
3: वायु
4: और
3: हरियाली की
4: रक्षा
3: करेंगे
4: तथा
3: प्रकृति को
4: नुकसान पहुंचाने वाले
3: कार्यों से
4: दूर रहेंगे।
3: हम सब मिलकर
4: स्वच्छ स्वस्थ
3: सुरक्षित
4: सुरक्षित
3: हरित
4: हरित
3: एवं
4: एवं
3: चिट्टा मुक्त हिमाचल के निर्माण हेतु
4: हिमाचल के निर्माण हेतु
3: पूर्ण
4: निष्ठा
3: और समर्पण से कार्य करने का संकल्प लेते हैं जय हिंद जय हिमाचल
4: जय हिंद जय हिमाचल।
1: इस अवसर पर कबूतरों तथा रंग बिरंगे गुब्बारों के माध्यम से इस जन आंदोलन के लिए चिट्टा मुक्त हिमाचल और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा,
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। साफ पानी, शुद्ध हवा, हमारे जंगल और नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कुदरत के इन अनमोल उपहारों को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मिशन सिर्फ एक दिन तक ही न सीमित रहे बल्कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पानी बचाए और प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्रकृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक हरे भरे हिमाचल प्रदेश का निर्माण करें। प्रकृति की रक्षा यानी हमारी स्वयं की सुरक्षा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण का महत्व और भी ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएं हमें यह संदेश दे रही है कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रदेश के जंगल हमारी जीवन रेखाएं हैं और हमारी सरकार फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश की 100% भूमि में से 68% वन भूमि है, यानी कि 68% वन भूमि है और 28% पर गहरा जंगल है। हम इस गहरे जंगल में और इसमें वृद्धि हो उसको 2030 तक 32% बढ़ाने की दृष्टि से हम राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुरुआत की है, जिसके तहत युवा मंडल, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों को पैसे के अनुसार 1 हेक्टेयर भूमि पर अगर वो वन उगाते हैं तो उन्हें 1,40,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। हम देश को इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में पूरे देश को 90,000 करोड़ रुपए की हर साल की इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में सेवाएं कर रहे हैं। 5 नदियां जो हिमाचल प्रदेश की है वो ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से होती है, लेकिन जो हमारे पानी है, जो हमारी संपदा है, जो हमारा बहता हुआ सोना है, उसका सदुपयोग काफी समय से कई बड़ी कंपनियां और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के हमारे जो प्रदेश है वो कर रहे हैं। हम उनसे अपने अधिकार की लड़ाई मांग रहे हैं। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया भी है, यानी कि जो साफ हवा आज दिल्ली में पहुंचती है, अगर शिमला में बारिश होती है तो हवा दिल्ली में भी पहुंचती है। मैं आज आपके साथ चिट्टे पे भी बात करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ भी एक जन आंदोलन शुरू किया है। यह अभियान केवल सरकारी अभियान नहीं है बल्कि यह लोगों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन बन चुका है। युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग से हम इस अभियान में योगदान मिल रहा है। हमारी सरकार की नीति चिट्टे पर जीरो टॉलरेंस की है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायत स्तर तक चिट्टा तस्करों और नशा करने वालों की पहचान की गई है। हमने नशे के प्रभाव के आधार पर पंचायतों को 3 वर्गों में बांटा है। रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी में बांटा गया है। जहां नशे का प्रभाव ज्यादा है वहां सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और चिट्टा माफियों की कमर तोड़ी जा रही है। मैं आज एक बार फिर चिट्टा माफियों को चेतावनी देता हूं कि अगर वह नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। चिट्टा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशा कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और अब तक हमने 66 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर ली है और 17 मामलों में नशा माफियों की संपत्ति को, जो उन्होंने नशा के द्वारा धन कमाया था, संपत्तियां बनाई थी, को ध्वस्त कर दिया गया है। चिट्टे के काले कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को सरकार छोड़ेगी नहीं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरकार ने नशे में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं। अभी तक 123 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 21 पुलिस कर्मियों के अलावा हमने 10 अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। हमारा संदेश साफ है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।

0: किया जाएगा। हमारी सरकार नशे के दलदल में फंसे युवाओं को फिर से समाज की मुख्या धारा में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे युवाओं के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उन्हें दलदल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चिट्टा मुक्त हिमाचल सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य का संकल्प भी है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस मिशन में आप हमारा भरपूर सहयोग दें। अभी जो चिट्टे से ग्रस्त लोग थे, उन्हें डी एडिक्शन सेंटर उनके लिए कोई नहीं था, प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर चलते थे। मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया और 7 तारीख को जो महिलाएं चिट्टे में सम्मिलित पाई गई है कुछ, उनके लिए पहला डी एडिक्शन सेंटर हम मशोबरा में बनाने जा रहे हैं। और उसमें जो महिलाएं वापिस समाज की मुख्या धारा में आना चाहती है, उन्हें दोबारा से मुख्या धारा में लाने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। इसी प्रकार कांगड़ा में भी हम एक डी एडिक्शन सेंटर बनाने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में। वहाँ भी जो हमारे युवा साथी जो चिट्टे की लत में पड़ गए हैं, परिवार के लोगों को पता नहीं है कि कहाँ उनका इलाज करवाना है, उस दृष्टिकोण से भी हम कांगड़ा में एक जल्दी ही डी एडिक्शन सेंटर को खोलने जा रहे हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जनगणना का काम शुरू हो चुका है। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि जनगणना के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपनी सही जानकारी दर्ज करवाएं। एक बार फिर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय कार्य करने वाले संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों को आज HP एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी युवा साथियों से आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी आपके पड़ोस में कोई भी युवा साथी गलती से चिट्टे की लट में अगर फंस गया है, उसकी जानकारी पुलिस विभाग के 112 नंबर पर दीजिए। 112 वाले नंबर पर जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा और जो चिट्टे में सम्मिलित कोई माफिया आपको नजर आता है, उसकी जानकारी भी आप 112 नंबर पर दीजिए। इसी के साथ मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत आज पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: इस मिनी मैराथन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक तिवारी ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा।
2: माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मेयर शिमला, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, प्रिय युवा साथियों, देवभूमि हिमाचल के जागरूक देवियों और सज्जनों, विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर आयोजित इस विशेष समारोह में हिमाचल प्रदेश पुलिस पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत सरकार के जनगणना विभाग की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस और एंटी चिट्टा जन आंदोलन का एक साथ जुड़ना कोई संयोग नहीं है, क्योंकि प्रकृति और युवा दोनों को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण धीरे धीरे प्रकृति को नष्ट करता है, वैसे ही चिट्टा धीरे धीरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। आज का यह आयोजन केवल एक मिनी मैराथन अथवा पुरस्कार वितरण समारोह नहीं है, यह एक ऐसे हिमाचल के निर्माण का संकल्प है जो स्वच्छ भी हो, हरित भी हो और चिट्टा मुक्त भी हो। हिमाचल प्रदेश ने अनेक चुनौतियां देखी हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस चुनौती ने सबसे अधिक परिवारों को भीतर तक झकझोरा, वह चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों का बढ़ता हुआ दुष्प्रभाव था। यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए चिट्टे के विरुद्ध लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाया। महोदय ने स्पष्ट कहा कि यदि हिमाचल को बचाना है तो हर गांव, हर पंचायत, हर विद्यालय, हर महाविद्यालय, हर परिवार और हर नागरिक को इसका हिस्सा बनना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पिछले वर्ष 15 नवंबर को इसी ऐतिहासिक रिज मैदान से एंटी चिट्टा जन आंदोलन का शुभारंभ किया। आज यह अभियान एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुका है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जन आंदोलन में को अपना मिशन बनाया है और इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज प्रदेश का प्रत्येक युवा चिट्टा छोड़ो जीवन चुनो का संदेश दे रहा है। आज पंचायतें चिट्टा मुक्त पंचायत का संकल्प ले रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने चिट्टा तस्करों, संगठित अपराधियों और नशा नेटवर्क के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। साथ ही जागरूकता फैलाने और नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के उपचार, परामर्श और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया है। इसी महीने 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मशोबरा में प्रदेश में महिलाओं के लिए डी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर को हिमाचल प्रदेश पुलिस संचालित करेगी। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि चिट्टे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं और किसी भी प्रकार की सूचना, चाहे वो चिट्टे से रिलेटेड हो या किसी चिट्टे एडिक्ट के बारे में हो, किसी परिवार की समस्या हो, उसको ERSS 112 पर तुरंत शेयर करें। आपकी एक सूचना किसी तस्कर को पकड़वा सकती है, किसी परिवार को टूटने से बचा सकती है और किसी युवा का भविष्य बचा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश पुलिस आपके नेतृत्व में इस जन आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने तथा चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध।

0: जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों का और बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये समर सीजन है और हमारे बहुत नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि सभी को विदित है कि आज 5 जून का दिवस है, ये पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा सतत विकास के लिए प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पहली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर इस तरह का आयोजन कर रहा है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। स्वच्छ हिमाचल, हरित हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल, इस संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ हिमाचल, हरित हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल मिनी मैराथन का शुभारंभ आज प्रातः किया गया। पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज एक दूसरे के पूरक लक्ष्य हैं। दोनों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सामाजिक सहयोग और निरंतर जागरूकता आवश्यक है। एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण नशे की प्रवृत्ति रोकने में सहायक हो सकता है। हरित क्षेत्र, पार्क, खेल मैदान और सामुदायिक स्थान युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में भागीदारी से युवाओं में जिम्मेदारी, अनुशासन और समाज के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित होती है, जिससे वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहते हैं। मिशन लाइफ एक भारत सरकार का प्रोग्राम है जो सतत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक पहल है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। यह विचार नशे की समस्या से भी जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। आओ मिलकर हिमाचल को स्वच्छ, हरा भरा और चिट्टा मुक्त बनाएं। स्वस्थ युवा, स्वस्थ पर्यावरण और जागरूक समाज के संकल्प के साथ सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल हिमाचल का निर्माण करें। धन्यवाद।
1: विभिन्न वर्गों में मिनी मैराथन प्रतियोगिता के विजेताओं को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मिनी मैराथन में हजारों प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसमें जतिन, मुस्कान, नरेश, कुलदीप, भीम सिंह और रजनी ने अपने विचार व्यक्त किए।
2: आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस व एनवायरनमेंट विभाग द्वारा एक मैराथन आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे युवाओं और युवतियों ने पार्टिसिपेट किया है और ये हिमाचल को चिट्टा मुक्त तथा एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।
3: मैं तो सारे पहले अज 5 जून अपना मैराथन दौड़ रहे हैं, सारे ने पार्टिसिपेट किया। पुलिस एंड आर्मी एंड सिविल जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो मैं इसका तहे दिल से गवर्नर साहब एंड सीएम साहब का बहुत धन्यवाद हूँ जो इन्होंने ये अभियान चलाया है। आज सभी ने बहुत ही तहे दिल से शब्द लिया है कि हम चिट्टा मुक्त ये शिमला को करेंगे, कोई भी नशा नहीं करेंगे हम। आज से ये गवर्नर साहब ने सुबह जब स्टार्ट किया था मैराथन ये शब्द दिलाई थी, तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ परमात्मा का, सब ये नशे से मुक्त रहें। थैंक यू।
4: आज एनवायरनमेंट डे पे आज हम यहाँ मैराथन करने के लिए आए थे और ये एक बहुत अच्छी एक पहल है सरकार के द्वारा एक चिट्टा मुक्त हिमाचल को बनाने के लिए। हम बहुत खुश हैं और आज की युवा पीढ़ी इसको कर रही है, हमें बहुत खुशी है और हम काफ़ी आनंद के साथ यहाँ मैराथन करने के लिए आए थे। धन्यवाद।
5: भीम सिंह, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित मैराथन में मैं भी एक कंटेस्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है इस पे और चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए जो ये पहल है हिमाचल पुलिस की, इसमें मैं भी एक अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ मैराथन में दौड़ के रूप में। तो सभी से मेरा आग्रह ये है कि चलना है, रुकना नहीं है, अब कभी ना कभी अपनी मंजिल तक आप जरूर पहुँचोगे।
6: I am a PhD scholar in Computer Science Department, Himachal Pradesh University. And आज World Environment Day पर दरिद शिमला पर हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये जो एंटी चित्ता मैराथन सच में एक बहुत बड़ा कदम था। इतने लोग एक साथ नशे के खिलाफ और साफ पर्यावरण के लिए दौड़े, ये देखकर दिल खुश हो गया है। एंड ये सिर्फ एक रेस नहीं थी बट एक संदेश था पूरे हिमाचल के लिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आज जो इनिशिएटिव लिया है वो सच में काबिले तारीफ है। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एंटी चिट्टा मिनी मैराथन में हम हजारों लोगों का जुड़ना ये दिखाता है कि हिमाचल नशे के खिलाफ एकजुट है। मैं बहुत खुश हूँ एंड इट इज़ अ मीनिंगफुल मोमेंट एंड हम सब इसका हिस्सा बने, बहुत ज़्यादा भाग्य की बात है। थैंक यू।
7: नमस्कार, मैं नरेश चाचा

0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य पर हिमाचल पुलिस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभाग से एक ड्रीम रन और मैराथन रन का आयोजन किया गया और ये एंटी चिट्टा और गो ग्रीन के नाम से किया गया और ये बहुत अच्छी पहल है कि आज आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो चिट्टा में संलिप्त हो रही है उससे उभरने के लिए बहुत अच्छा। मेरा भी ये संदेश है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और चिट्टे को जो है हिमाचल प्रदेश से दूर भगाएं। धन्यवाद।
1: आज की इस एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन में दोहराया गया युवाओं के लिए संकल्प, प्रदेश बनेगा नशा मुक्त हिमाचल स्वच्छ पर्यावरण से भरपूर। इसी के साथ चिट्टा मुक्त जीवन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए हुई मिनी मैराथन समारोह की रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। तकनीकी सहयोग वरिष्ठ तकनीशियन रामचंद, संपादन आलेख और वाचिका सपना ठाकुर, क्षेत्र संकलन और प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे चिट्टा मुक्त जीवन और स्वच्छ पर्यावरण पर रिज शिमला में आयोजित मिनी मैराथन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। इसमें तकनीकी सहयोग दिया वरिष्ठ तकनीशियन रामचंद्र ने, संपादन आलेख व वाचक स्वर सपना ठाकुर का था, क्षेत्र संकलन व प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।
5: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से एंटी चिट्टा कैंपेनिंग के अंतर्गत आयोजित मिनी मैराथन कार्यक्रम पर रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप।

लगता है मेरा खुदा मेहरबान है मुझ पर, लगता है मेरा खुदा मेहरबान है मुझ पर, मेरी दुनिया में तेरी मौजूदगी यूं ही तो नहीं।

कि बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू, बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू, जितना भी सोचते हैं उतना ही महक जाते हैं।

चांदनी रातों का ये हसीन सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो हम सफर अनूप के साथ। जरूरी तो नहीं मोहब्बत लफ्जों में बयान हो, जरूरी तो नहीं मोहब्बत लफ्जों में बयान हो, क्या सच में मेरी आंखें तुम्हें कुछ नहीं कहती।

तुमसे मिले ना थे तो कोई आरजू ना थी, कि तुमसे मिले ना थे तो कोई आरजू ना थी, देख लिया तुम्हें तो तुम्हारे तलबगार हो गए।

मैं तुम्हें मुकद्दर की लकीरों से चुरा लूंगा, मैं तुम्हें मुकद्दर की लकीरों से चुरा लूंगा। तुम बस एक बार मेरे होने का दावा तो करो,

मेरी रूह को छूने के लिए बस कुछ लफ्ज़ ही काफ़ी हैं। मेरी रूह को छूने के लिए बस कुछ लफ्ज़ ही काफ़ी हैं। कह दो बस इतना कि तेरे साथ जीना अभी बाकी है।

ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर

0: बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।